0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: You hear it once and remember everything.
3: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
2: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
4: लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग है कि मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है. एक ह्यूमन बॉडी में डेंगू वायरस होगा जो मच्छर के थ्रू स्प्रेड होगा.
5: मच्छर वेक्टर है, उसका
4: सूत्रधार है,
5: उसको लेके चलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है.
4: डेंगू के बारे में एक सबसे बहुत पॉपुलर एक तो मिथ है कि पपीते के पत्ते दीजिए तो डेंगू ठीक हो जाता है. क्या ये सही है?
5: कोई बोले कि मुझे प्रूफ लेके आओ कि पैराशूट से जान बचती है.
4: क्या ये सच है कि कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं और कुछ लोगों को मच्छर कम काटते हैं? आजकल हमारी सोसाइटीज में फ्यूमिगेशन होता है.
5: The politicians love it and municipal authorities also love it. Adult mosquito हैं जो वहाँ घूम रहे हैं मच्छर, उनको तो मार देगा, लेकिन जो उनके eggs और larva पे इसका कोई असर नहीं होता है. They can survive for many months together in even dry environment. डेंगू के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि या तो आदमी सोचता है कि वो सब कुछ इसके बारे में जानता है, या फिर वो सोचता है कि इससे तो कुछ होना ही नहीं है, ये तो हर साल होती है बीमारी,
4: और दोनों ही केसेस में फंस जाता है.
5: पहले डेंगू था वो सिर्फ शहरों की समस्या मानी जाती है, कहते हैं कि शहरों में डेंगू होता है, लेकिन अब गांव देहातों में भी डेंगू होता है.
4: डेंगू इज नो लॉन्गर अ मॉनसून डिजीज. इनफैक्ट इंडिया में नियरली 7,000 केसेस वर रिकॉर्डेड इन जस्ट द फर्स्ट 2 months. डेंगू जानलेवा कब हो जाता है?
5: प्लेटलेट के बारे में काफी सारे मिथ है. लोग सोचते हैं कि प्लेटलेट गिर रहे हैं हमारे, हमारा प्लेटलेट 1,00,000 रह गया, अब तो हमें पता नहीं क्या होने वाला है, घबरा जाते हैं.
4: डेंगू से बहुत फेमस पर्सनालिटीज की डेथ हुई. यश चोपड़ा डाइड आउट ऑफ डेंगू, राइट? सो इट कैन बी एंड समबडी हुज एज इनफॉर्मड एज हिम डाइड आउट ऑफ डेंगू.
5: ये ऐसी बीमारियां हैं जो गरीब से लेके अमीर तक को अफेक्ट कर सकती है. आपके पास कोई भी बेस्ट फैसिलिटी हो, बेस्ट ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज हो, अगर किसी सिनेरियो ऐसा आ सकता है कि अगर आपको डेंगू की सीवियर इलनेस हो गई तो बचने की संभावना ट्रीटमेंट से ज्यादा बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स पर निर्भर करती है.
4: डेंगू, इट इज नो लॉन्गर अ न्यू डिजीज. मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट इट. हमारे परिवार में किसी ना किसी को कभी ना कभी तो ये हो चुका है. फीवर होता है, प्लेटलेट काउंट डिप करता है, और लोगों को लगता है पपीते के पत्ते के जूस से तो पक्का ठीक हो जाता है. लेकिन डेंगू के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अब बदल रही हैं और जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेंगू इज नो लॉन्गर अ मॉनसून डिजीज. केसेस जनरली जो पहले लोगों को लगता था कि रेन्स के साथ आएंगे और विंटर के साथ डिसअपियर कर जाएंगे, ऐसा अब नहीं हो रहा है. दैट पैटर्न इज ब्रोकन. ये अब साल भर रिकॉर्ड होता है. इनफैक्ट इंडिया में नियरली 7,000 केसेस वर रिकॉर्डेड इन जस्ट द फर्स्ट 2 months. दैट्स जनवरी एंड फरवरी. सो नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर भी बढ़ रहे हैं. कोल्ड हिल स्टेशन में कभी डेंगू की बीमारी के बारे में नहीं सुना गया था, जहां अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. तो आपको इस चेंजिंग डिजीज के बारे में क्या जानना चाहिए? और ये सारी जानकारियों के लिए हमने ये पॉडकास्ट बनाया है. इट इज नॉट जस्ट एन अवेयरनेस पॉडकास्ट, इट इज साइंस बैक्ड. हम इसमें मिथ्स बस्ट करेंगे, रिस्क किस तरह के होते हैं, किन लोगों को होते हैं, वैक्सीन लगाने की चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, क्या फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के जाने चाहिए, डॉक्टर की क्या एडवाइस है, इन पूरी डिजीज स्पेक्ट्रम के बारे में वो हम आपको बताएंगे. एंड आई कुडंट थिंक of a better expert because I have with me somebody who has worked on polio elimination. He has helped draft India's national vaccine policy. He has co-authored one of the most detailed accounts of India's COVID response. Unka aap chehra dekhenge to aapko yaad aa jayega. He is also part of the World Health Organization, work in India for years. And in fact, last year, he was recognized globally with the Wiley Research Heroes Prize as well. Inhone bahut काम करा है.

0: वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में. प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया. हेलो.
1: थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सोनल जी.
0: हम ये पॉडकास्ट शुरू करें इससे पहले मैं सबको बता दूं दैट दिस इज पार्ट ऑफ एन ऑल आउट एंड इंडिया टुडे लार्जर इनिशिएटिव, जिसे हम कह रहे हैं साथ लड़ेंगे डेंगू से, जिसके पूरे दौरान हम आपके पास बहुत सारी ऐसी खबरें लेकर आ रहे हैं जो आपको डेंगू के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड रखेंगी. मेरा सबसे पहला सवाल डेंगू पर यह है कि मेरे हिसाब से डेंगू की जो पूरी परिभाषा है और डेंगू के बारे में जो भी हम जानते हैं वो क्या रैपिडली बदल रहा है. एक समय था कि लोगों को लगता था और हम सबकी ये अंडरस्टैंडिंग थी, डॉक्टर्स इंक्लूडेड, दैट मॉनसून आएगा, डेंगू के केसेस बढ़ेंगे और विंटर्स जैसे ही सेटल होंगे डेंगू ख़त्म हो जाएगा. लेकिन इस बार हमने देखा कि समर्स में डेंगू बढ़ गया. इस बार का आउटब्रेक दिल्ली में बहुत मैसिव रहा है, पूरे भारतवर्ष में. मैंने जैसे नंबर्स में बताया, नंबर्स वर यू नो क्रेजी. तो क्या ये पूरी परिभाषा बदल रही है, ये वायरस का फॉर्म बदल रहा है?
2: एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज से 20 साल पहले डेंगू का बहुत सारे लोगों ने नाम तक नहीं सुना था. 2005 में डेंगू का आउटब्रेक दिल्ली में हुआ था, उसके बाद पूरे देश में खबर बनी, लेकिन तब भी यह वायरस सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों में, अर्बन एरिया में रिपोर्ट किया जाता था, वहीं पर कुछ केसेज आते थे. लेकिन पिछले 20 सालों में कई सारी चीज़ें बदली हैं. उनमें से एक हुआ है कि पहले डेंगू का, जैसा कि आपने बात की, वो जो केसेज आते थे वो यूजुअली बारिश के शुरुआत से और सितंबर अक्टूबर तक आते थे. लेकिन अब इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल की शुरुआत में ही देश में कई हजारों केस रिपोर्ट हो चुके हैं. फरवरी मार्च तक का डेटा अवेलेबल है. तो अब थ्रू आउट द ईयर केसेज आते हैं. उसे कई वजह हैं, उनमें से एक मुख्य वजह ही है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो ऑल अराउंड द ईयर चल रही हैं. दूसरा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. डेंगू, जैसा कि हम जानते हैं, एक वायरस इलनेस है जो मच्छरों के थ्रू फैलती है. जो मच्छर होते हैं उसका एडीज एजेप्टाई जो मेन वेक्टर है उसको फैलाता है. तो जो मच्छर होते हैं वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर, यूजली 8 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं. तो पहले क्या होता था, क्लियर ठंड पड़ती थी, एक्सेस समर होती थी, तो वो मच्छर होते थे, पनप नहीं पाते थे. लेकिन आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो स्टेबल सा बना हुआ है. कभी सर्दियों में भी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उससे अब थ्रू आउट द ईयर हम न केवल डेंगू बल्कि अन्य बीमारियों को भी देख रहे हैं. तो बिल्कुल सच है, राउंड द ईयर पूरे देश में, कई राज्यों में, और काफी गंभीर तरीके से और काफी तेज तरीके से डेंगू फैल रहा है.
0: तो राउंड द ईयर आपने कहा ये फैल रहा है, तो
2: लगभग राउंड द एक्सेस विंटर्स जब होती हैं तब ऑब्वियसली मॉस्किटो उस समय नहीं सर्वाइव कर पाते हैं और हाइबरनेट कर जाते हैं. बाकी थ्रू आउट द जनवरी से लेके हम दिसंबर तक कह सकते हैं. और ऑफ कोर्स सीजनल वेरिएशन स्टेट के हिसाब से आते हैं. अगर नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सर्दी पड़ती है उस समय नहीं होता, लेकिन केरला तमिलनाडु में उस समय भी दिसंबर के आसपास भी केसेज आते ही. डेंगू के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि या तो आदमी सोचता है कि वो सब कुछ इसके बारे में जानता है, या फिर वो सोचता है कि इससे तो कुछ होना ही नहीं है, ये तो हर साल होती है बीमारी.
0: हाँ, और दोनों ही केसेस में फंस जाता है.
2: और दोनों ही केसेस में फंस जाता है, और इसी वजह से डेंगू इतना ज्यादा फैल रहा है.
0: जानलेवा भी है डेंगू?
2: अरे, बहुत खतरनाक हो सकता है. एक्चुअली क्या है कि वायरल जो इलनेसेज होती है, जिसमें डेंगू भी है, डेंगू जो आम भाषा में बोलते हैं, वायरल इलनेस है, तो ज्यादातर केसेज में तो वो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. लोगों को मतलब हो गया, उनको पता भी नहीं चला, या कुछ हुआ, बुखार आया, लेकिन किसको खतरनाक हो जाए ये पता नहीं चलता है. और डेफिनेटली 100 में से 1 व्यक्ति को गंभीर डेंगू की इलनेस हो सकती है, और वो किसको होगी ये नहीं जान सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति को थोड़ा और जानकारी हो, क्योंकि लोग सोचते हैं ठीक है, बुखार है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी और को भी हुआ था, हम ठीक हो जाएंगे. लेकिन किसी और को हुआ इसका मतलब, और वो ठीक हो गया, इसका मतलब नहीं कि आप भी ठीक हो जाओगे. सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, और उसके क्या गंभीर लक्षण होते हैं, क्या चिंताजनक कारण होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए.
0: क्या कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोग हैं, जैसे प्रेग्नेंट विमेन हो, या एल्डरली हो, या जिनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो, या कोई कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा हो, जो ज्यादा वल्नरेबल है डेंगू के लिए?
2: सुनील जी, आपने तो जवाब दे दिया, मैं क्या बोलूं. बिल्कुल सही बात है
0: ये, मैं आपको बता देती हूँ, ये चैलेंज है मेरे साथ. मुझे लगता है रिसर्च करने में पॉडकास्ट की मुझे ऑलरेडी इतना पता होता है कि ये सचमुच में एक प्रॉब्लम है. आई डोंट नो व्हाट एल्स टू आस्क.
2: तो खासतौर से आपने सारे जो लोग बोले, गर्भवती महिलाएं, बच्चों को, खासतौर से 10 साल से छोटे बच्चे और एल्डरली पॉपुलेशन, इनको गंभीर बीमारी होने की संभावना है. एडल्ट पॉपुलेशन होती है, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, उसमें कम होता है. कम गंभीर बीमारी होने की संभावना है या गंभीर बीमारी कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं हो सकती। किसको गंभीर बीमारी हो जाए हमें नहीं पता है। और एक चीज़ और है, उस व्यक्ति के ओवरऑल इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। साथ में अगर प्रीवियस या पास्ट में कोई डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है, और जैसा कि हम जानते हैं डेंगू के चार टाइप सीरोटाइप होते हैं, तो अगर किसी और से हुआ है फिर नई की वजह से इन्फेक्शन हुआ, तो गंभीर बीमारी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है।
0: सो ये कोविड की तरह है, पता नहीं किसको कब हो, कितना इंटेंसिटी से हिट करेगा। लेकिन अनलाइक कोविड, अगर एक बार आपको हो गया है तो उसकी इम्यूनिटी नहीं है, सेकेंड टाइम होने में और ज्यादा दिक्कत हो सकती है।
2: तो डेंगू के चार सब टाइप होते हैं। डेंगू का जो टाइप वन है वो सबसे कॉमन है। तो अगर जिस टाइप से आपको इन्फेक्शन हो गया उससे दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन गंभीर बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल कोविड की तरह,
0: ठीक है, लेकिन इम्यूनिटी हो गई आपकी,
2: इम्यूनिटी होगी। लेकिन बाकी तीन अगर जो हैं उनसे वो गंभीर बीमारी हो सकती है, उनसे फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्यूचर में अगर जिस टाइप से आपको इन्फेक्शन हुआ है उससे फ्यूचर में इन्फेक्शन हुआ तो गंभीर बीमारी की संभावना कम है, लेकिन किसी दूसरे टाइप से हुआ तो वो ऐसे मान के चलिए कि जैसा पहली बार हो रहा है।
0: तो ज्यादातर जो मेट्रोज में लोग रहते हैं, या अब मेट्रोज की परिभाषा भी देखिए इंडिया में बहुत बदल रही है, कानपुर लखनऊ भी अब मेट्रो जैसे यू नो सिटीज ही हो गई हैं, तो क्या ये कहा जाए कि जो प्रॉपर अर्बन सिटीज हैं वहां पर एक तरह का डेंगू होता है, बाकी जगह दूसरी तरह का डेंगू होता है?
2: नहीं, वायरस जो होते हैं पूरे देश में एक बार कहीं पर भी पहुंच गए तो चूंकि जनता इधर से उस जगह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन हवाई जहाज से जाती रहती है, और बल्कि ऐसा होता है कि वही वायरस जो डेंगू आज से 20 साल पहले सिर्फ कुछ मेट्रो में, जैसे आपने बात की, था दिल्ली में 2005 के आसपास अगर मुझे सही से याद है, तो काफी गंभीर डेंगू की आउटब्रेक हुई थी, काफी लोगों की जान भी गई थी उसमें, और उसके बाद डेंगू न्यूज में आया। लेकिन
0: उससे पहले लोगों को आइडिया नहीं था डेंगू जैसी कोई बीमारी होती है।
2: उससे पहले लोगों को आइडिया नहीं था डेंगू जैसी कोई बीमारी, बिल्कुल सही कहा आपने। और उससे पहले छोटे शहरों में और काफी सारे इंडियन स्टेट में डेंगू वायरस कभी डिटेक्ट हुआ ही नहीं था, और आज 20 सालों के बाद लगभग देश के हर राज्य में जहां पर भी सर्वेलेंस किया जाता है वहां पर डेंगू आ चुका है। दूसरी चीज है, पहले डेंगू था वो सिर्फ शहरों की समस्या मानी जाती है, कहते हैं कि शहरों में डेंगू होता है, लेकिन अब गांव देहातों में भी डेंगू होता है।
0: अच्छा,
2: उसके कई सारे कारण है, जैसे कि अब गांव में भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, गांव में तो कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और वही लोग शहरों में रहते हैं वही गांव में जाते हैं अपने साथ डेंगू वायरस को लेके जाते हैं, तो अब गांव में भी डेंगू होने लगा है।
1: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.

0: सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन डेंगी के बारे में ये है कि अगर ये एक वायरस है तो ये मच्छर के थ्रू कैसे पास हो रहा है? आप इसका साइंस हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं?
1: ये काफी इंटरेस्टिंग बात है और इसमें भी एक याद रखने की बात है
0: हाँ
1: कि जो मच्छर होते हैं उसमें फीमेल मॉस्किटो ही ह्यूमन बाइट्स करते हैं, बाकी मेल मॉस्किटो
0: आउच
1: सारे किसी भी स्पीसीज में, कई सारे जो मलेरिया का भी अनफ्रेज स्पीसीज होती है,
0: हाँ
1: जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो ह्यूमन ब्लड को सक नहीं करते हैं, वो फ्लावर से के थ्रू उनका सर्वाइवल होता है, लेकिन फीमेल ह्यूमन ब्लड, फीमेल मॉस्किटो
0: शी स्टिंग्स
1: शी स्टिंग्स बिकॉज फॉर लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो टू ले द एग्स, अपने मच्छरों के अंडे देने के लिए उनको ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है। ह्यूमन ब्लड से उनको अमीनो एसिड्स, प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे उनके लार्वा होंगे वो काफी हेल्दी होंगे।
0: हाउ फैसिनेटिंग.
1: सो इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोज। अब उस मॉस्किटो में अगर के जो लाइफ साइकिल का हिस्सा है, अगर उस दौरान डेंगी वायरस कोई डेंगी से इन्फेक्टेड है तो उसके ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा। अब वो जिस मच्छर ने, क्योंकि उसको सिंगल बाइट से सफिशियंट ब्लड नहीं मिलता है, तो एक साइकिल में उस फीमेल एडीज मॉस्किटो जो डेंगू को फैलाती है उसको एक से ज्यादा लोगों का ब्लड सक करना होगा। तो अगर उसने पहले एक व्यक्ति का ब्लड सक किया, अगर उसमें डेंगी वायरस है तो उसके उसमें आ गया, फिर दूसरे व्यक्ति को ब्लड सक किया तो जब मॉस्किटो बाइट करता है तो उस समय वो थोड़ा सा इंजेक्ट भी करता है तो वो वायरस दूसरे व्यक्ति को चला जाएगा, इसलिए मॉस्किटो बाइट के माध्यम से भी डेंगी फैल
0: लेकिन अब
1: जाएगा।
0: तो जैसे आपने कहा वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, वायरस भी अडेप्ट कर रहा है उन सब चीजों को, तो अभी साल भर हो रहा है, तो इज इट सेफ टू से कि साल भर अब हमें कॉशियस रहने की जरूरत है?
1: इसमें मुख्य बात याद करने की, हमें मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स को अक्रॉस द ईयर प्रिवेंट करना है। एडीज का आर्टिफिशियल कलेक्शन, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट, अब सबसे बड़ी चुनौती है मेजर सिटीज में कि
0: जहाँ
1: कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग है,
0: 24/7
1: तो
0: चलता रहता है.
1: कंस्ट्रक्शन साइट पे टायर पड़े होंगे, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर होगा, पानी की बोतल, मच्छर को ग्रो करने के लिए ज्यादा और लार्वा देने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। अगर जो वाटर बॉटल के ढक्कन होते हैं कैप्स में भी इतना पानी भी अगर उनको मिल जाएगा तो उसमें मॉस्किटो ग्रो कर सकता है।
0: आई सी.
1: तो कंस्ट्रक्शन साइट के बढ़ने की वजह से अब अक्रॉस द ईयर हो रहा है, और साथ में जैसे कोई बस है, कोई मोटरसाइकिल रखी हुई है, उसके बगल में कुछ पड़ा हुआ है, तो कहीं से भी इस पर मच्छर ग्रो कर
0: मेरे
1: सकता है।
0: दिमाग में आ रहा है कि हम सब बोल्स रखते हैं बर्ड्स के लिए जिसमें पानी पीने के लिए, डॉग्स के लिए, वो सारे मॉनसून में तो भरे ही रहते हैं, अदर समय भी पूरे साल भर भी भरे ही रहते हैं, तो वो भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो
1: वेरी
0: सकता है.
1: करेक्टली, या उससे भी ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है। तो उसको अगर आपको किसी को पानी देना है डॉग्स वगैरह के लिए तो उसको बदलते रहिए, उस वाटर कलेक्शन नहीं होना चाहिए, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और
0: कितने घंटे में?
1: सो मेरा अप्रोच इसमें यह है कि आपको वीक में एक दिन जो आपकी छतों पर, घर के किसी भी हिस्से में, उसको 10 मिनट निकालिए और जो भी आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर है उसको हटा दीजिए।
0: अच्छा.
1: सो वंस इन अ वीक कर देंगे तो
0: हाँ
1: आपका काम हो जाएगा, लेकिन जहां पे आप पानी भर के रख रहे हैं
0: हाँ
1: तो उसमें तो डेली बदलिए अच्छी बात है।
0: हाँ
1: वंस इन अ वीक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर दिन उसमें पानी इकट्ठा हो जाए, बारिश किसी दिन होती है कहीं कर रखे हैं, तो वंस इन अ वीक थॉरो कॉम्बिंग ऑपरेशन,
0: ओह गॉट इट.
1: कि हर जगह जाके देखना है कि आपके वाटर टैंक खुला तो नहीं है, वाटर टैंक के बगल में कहीं पडल तो नहीं बन गई है, छत पे कोई गमला तो नहीं है, और गमलों के नीचे रखने का जो प्लेट आती है उनमें भी कलेक्ट हो सकता है, कोई वाटर की बोतल तो नहीं पड़ी हुई है नीचे, पार्किंग एरिया में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुछ चीज़ है, तो हर जगह देखना है। वंस इन अ वीक अगर लोग 10 मिनट के लिए इस चीज के लिए टाइम निकालें तो एटलीस्ट आप अपने घर में मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट को प्रिवेंट कर सकते हैं और आसपास अपने खुद को बचा सकते हैं और आसपास के पड़ोसियों को बचा सकते हैं।
0: अच्छा, एक चीज हमने अपने बचपन में बहुत देखी थी
1: हाँ
0: कि जैसे ही मस्कीटो का सीजन आता था, अब तो खैर आपने इस
1: हाँ
0: पॉडकास्ट में बता ही दिया है कि कोई
1: ठीक है
0: सीजन नहीं होता है मस्कीटो का, अब साल भर आपको मस्कीटो से प्रिवेंशन
1: हाँ
0: करना है, लेकिन बारिश के समय कूलर्स में जरूर मिट्टी का तेल डाला जाता था. हाउ डज दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम डेंगी?
1: सो कूलर्स में जो मिट्टी का तेल डालते हैं तो उससे, क्योंकि मिट्टी का तेल या कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन होता है वो लाइटर हल्का होता है, तो उस पर लेयर बना देता है और उससे एग्स और लार्वा जो उसे ग्रो नहीं कर पाते हैं और खत्म हो जाते हैं वहां से।
0: अच्छा, तो वो पानी का वही रिटेंशन हो गया.
1: पानी,
0: आजकल हमारी सोसाइटीज में फ्यूमिगेशन होता है.
1: सो फ्यूमिगेशन एक पार्शियली यूजफुल तरीका है सच माना जाए तो।
0: अच्छा,
1: क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि एमसीडी या लोकल अथॉरिटीज कुछ कर रही है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, इट्स विजिबल, सो पॉलिटिशियंस लव इट एंड म्युनिसिपल अथॉरिटीज आल्सो लव इट। इसका कुछ पार्शियल रोल है, वो ऐसे है कि एडल्ट मॉस्किटो है जो वहां घूम रहे हैं मच्छर, उनको तो मार देगा, लेकिन जो उनके एग्स और लार्वा पे इसका कोई असर नहीं होता है। अब मॉस्किटो एग्स होते हैं वो काफी मतलब इस चीज के लिए बने हैं कि बाहर के लोग कोई फ्यूमिगेशन और सब करेंगे वो बच के रहना है, तो वो एग्स होते हैं दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी मंथ्स टुगेदर इन इवन ड्राई एनवायरनमेंट।
0: वाओ,
1: हाँ, इसीलिए वो एग कभी पहले ले किए गए हैं तो उसके बाद जब मौका आता है तब वो उसमें से लार्वा निकलते हैं। सो जब राइट एनवायरनमेंट होता है, सो फ्यूमिगेशन इज एडल्ट मॉस्किटो को हटा देगा, तो फ्यूमिगेशन करना चाहिए, एडल्ट मॉस्किटो की संख्या कम हो जाएगी।
0: हाँ।
1: लेकिन उसके साथ प्रिवेंटिव इंटरवेंशन और बाकी मॉस्किटो लार्वा रिडक्शन स्ट्रेटजी भी करनी होगी, तभी वो इफेक्टिव रहेगा।
0: विच इज बेसिकली पानी नहीं जमा होने देना है,
1: पानी नहीं जमा होने देना, और जहां पर भी मॉस्किटो एग्स एंड लार्वा की संभावना है उसको इलिमिनेट करना है आपको। जैसे पानी भरा हुआ है उसमें मतलब खाली कर दीजिए, लेकिन जहां पर भी सम्मान है कि यहाँ लग रहा है उसको रगड़ के साफ कीजिए और कंप्लीट कीजिए।
0: ये ना बहुत काम लग रहा है मुझे डॉक्टर लहरिया, मुझे, मैं हर पॉडकास्ट करती हूँ, मुझे ये जरूर डर लगता है कि लोग कहेंगे अब इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। आप क्या कुछ 5 टिप्स दे सकते हैं जो रेगुलर रूटीन में लोग करें कि कोई भी मच्छर हो या मच्छर से रिलेटेड डिजीज हो वो ना हो? 5 चीजें जो आपको अपने घर में बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए।
1: आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला चीज तो है कि आप अपने घर में मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स को खत्म करिए। तो उसमें बहुत आसान है, 10 मिनट के लिए सप्ताह में एक बार निकाल लीजिए, घर का चक्कर लगाइए कि रेफ्रिजरेटर के पीछे हिस्से में जो पानी कलेक्शन की जगह होता है उस तक को खाली करिए, वहां पर भी मॉस्किटो ब्रीड हो सकता है। और घर के वाटर टैंक और नीचे नीचे जो पार्किंग में टैंक होते हैं, कोई भी खाली टायर वाटर बॉटल, तो एक तो घर का वो क्लीनिंग कर सकते हैं। दूसरा आपको करना है कि मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स हैं, खासतौर से अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो वो इफेक्टिव होते हैं, उनको ढंग से यूज कीजिए इवनिंग में या जब भी मौका होता है। तीसरा मुझे लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पर काम नहीं हो सकता, तो कॉलोनी या सोसाइटी के लेवल पर, तो आप आस पड़ोसियों को भी बताइए कि ये सारी सावधानियां बरतें हैं। चौथा, अगर आप मॉस्किटो काफी सारे कंस्ट्रक्शन साइट हैं या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं या पार्क में घूमने जा रहे हैं तो फुल स्लीव क्लॉथ पहनिए। और पांचवा, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कीजिए कि मतलब उनको फ्यूमिगेशन मेजर करें।
0: चलिए, अच्छा, इलाज के बारे में विस्तार से बात करते हैं। डेंगी कहले सिम्टम्स मुझे बताइए, अगर मुझे एक मस्कीटो बाइट हुआ है या ना नहीं हुआ है, अगर मुझे फीवर अभी चढ़ गया है, किस स्टेज पर मुझे ये सोचना चाहिए कि अब मुझे डेंगी का टेस्ट कराना है?
1: वेल, सो यूजली यहाँ पे समझने की बात है कि जब मॉस्किटो ने आपको काटा तो उसके इमीडिएटली बाद डेंगी नहीं होता है।
0: अच्छा।
1: यूजली जिसको बोलते हैं कि जब एक्सपोजर हुआ, मतलब मॉस्किटो ने बाइट किया, उससे 3 से 14 दिन के भीतर डेंगी,
0: 3 to 14
1: इंक्यूबेशन पीरियड है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपको कभी मॉस्किटो ने कहीं किसी ऐसी जगह गए जहां डेंगी फैल रहा था, वहां से लौट के 2 आए और 2 सप्ताह निकल गए, उसके बाद बुखार आया, तो फिर आपको डेंगी नहीं है वो। मतलब 14 डे उसका लॉन्गेस्ट इनक्यूबेशन। यूजुअली उसके मॉस्किटो बाइट के 3 से 4 दिन के बाद आपको सिम्टम आना स्टार्ट होते हैं। तो सिम्टम क्या होता है? फीवर से स्टार्ट होता है। तो चलो इसको समझते हैं। तो डेंगी के जो सिम्टम है, फीवर होता है, हाई फीवर होता है, मैं जा सकता है, लेकिन नॉर्मल 101 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, यूजुअली कुछ लोगों में 104 तक जा सकता है। दूसरा है बॉडी एक। तो बॉडी एक में जॉइंट एक्स होते हैं मेनली, एक जॉइंट और मसल एक। तीसरा, डेंगी का जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है रिट्रो ऑर्बिटल पेन, आंखों के पीछे दर्द होना डेंगी की निशानी है। हाँ, बाकी अलग लक्षण भी, काफी सारे तरह के लक्षण आ सकते हैं, किसी को वॉमिटिंग हो सकती है, किसी को रनी नोज और कॉफ और कोल्ड, ये सब
0: गम्स में भी बोलते हैं,
1: वो ब्लीडिंग की बात आ जाती है। रैशेज, सर्टेन टाइप ऑफ रैशेज हो सकते हैं जो यूजुअली आपके हाथ पाम और सोल को छोड़ के बाकी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। सो मैक्यूलो पेपलर रैशेज, उसके कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हैं लेकिन रैशेज हो सकते हैं, वो प्लेटलेट पे होते हैं। मैं जानता हूँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है।
0: हाँ,
1: तो
0: okay.
1: वो प्लेटलेट अगर कम हो जाती हैं, तो ब्लीडिंग के इनिशियल वो हो जाते हैं, तो तब उसमें बॉडी पे रैशेज आ सकते हैं, लेकिन हर केस में रैशेज आने की जरूरत नहीं। ज्यादातर लोगों को फीवर आता है, वो हाई फीवर होता है, थकान, कमजोरी और मसल एक एंड बॉडी एक होता है। बॉडी एक मसल एक होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि मोस्ट लाइकली अगर डेंगू सीजन चल रहा है तो डेंगू है। अगर चिकनगुनिया फैल रहा है तो चिकनगुनिया में भी वही सेम लक्षण होते हैं,
0: करेक्ट,
1: लेकिन वो सीजन कौन सा वायरस वहां फैल रहा है उसके ऊपर है।
0: तो अगर आपको फीवर है, जैसे डॉक्टर जनरली, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ क्योंकि अगर आपके बच्चे को फीवर है और नहीं उतर रहा है तो डॉक्टर सबसे पहले बोलेगा कि चेक करिए बॉडी में कहीं इंसेक्ट बाइट्स तो नहीं है। फिर वो ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में निकल कर आएगा कि कौन सा वायरस है अगर है तो, एंड उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट होएगा। अगर आपका अब डेंगू पॉजिटिव निकला है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा?
1: देखिए, डेंगू पॉजिटिव निकला है तो ट्रीटमेंट सेम रहेगा। अब आपको पता चल गया कि डेंगू है तो थोड़ी सावधानी बरतनी है और आपको डेंजर साइंस पता होने चाहिए। जैसे वॉमिटिंग आए, अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी भी शरीर के हिस्से से, स्टूल आपका ब्लैक कलर का आने लगे, तो उन डेंजर साइंस को जानना है। यूजुअली जो क्रिटिकल डेंजर साइन वाले सिनेरियो आता है वो तब आता है। सो जो पहला स्टेज होता है फीवर, सो यूजुअली 3 से 4 दिन में फीवर चला जाता है। जो 7th डे ऑफ उसका इलनेस होता है उससे क्रिटिकल पे, जब फीवर जाने के बाद व्यक्ति क्रिटिकल हो सकता है। तो एक चीज याद रखने की डेंगू में कि फीवर उतर सकता है लेकिन तब भी वो व्यक्ति क्रिटिकल हो सकता है।
0: अच्छा,
1: तो ट्रीटमेंट सेम है, बस कंफर्म हो जाता है तो उसके आधार पर आप अधिक सावधानी बरत सकते हैं। आपको फ्लूइड्स लेना है, पैरासिटामोल लेनी है, लेकिन जो नहीं लेना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो खासतौर से आपको जो आइबुप्रोफेन आती है या बोबेरॉन आती है, एस्पिरिन आती है, जो ब्लड थिनर का काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, कुछ दवाइयों को जैसे कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है, जब पैरासिटामोल के अकेला लेना है वो सेफ है, लेकिन बाकी दवाइयां थोड़ी हार्मफुल हो सकती हैं, तो डॉक्टर आपको बता देगा कि कौन सा वो कौन सी दवाई नहीं लेनी है।
0: कॉम्बिफ्लेम
1: नहीं ले सकते,
0: नहीं ले सकते
1: अगर डेंगू है तो, नहीं लेना है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करेगी और उसमें सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, प्लेटलेट को अफेक्ट कर सकती है।
0: तो एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा लेसन ये होना चाहिए कि अगर आपको फीवर है तो सबसे पहले जाके एंटीबायोटिक ना खाएं।
1: Definitely.
0: सबसे अगर आपको जरा सा भी लो ग्रेड फीवर है और आप डॉक्टर को परेशान नहीं करना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं क्लिनिक में, एक बेसिक पैरासिटामोल खा लें और कोई भी कॉम्बिनेशन मेडिसिन ना खाएं। दैट्स व्हाट यू सेड।
1: एग्जैक्टली।
0: ओके ओके।

0: मुझे अच्छा लगा कि भाई ऐसा एशियन गेम्स में हुआ था कि और मैंने जीता था और काफी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल लाइफ किया जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। बिल्कुल हमेशा खुशी रहता है कि नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है मैंने अपना सीजन वेस्ट किया है और कम बैक ठीक हो रहा है, अभी बाकी कॉम्पिटिशन भी हैं। अगर 100% फिट हो तो फिर वो फाइटिंग स्पिरिट ज़्यादा रहती है, मतलब ये लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर मतलब आप इंजरी से आ रहे हैं तो थोड़ा सा सोच सोच के कदम रखना पड़ता है। तो आज वही था कि थोड़ा मन में डर था, कभी सोच रहा था कि पूरा जोर से मैं भागूँ और कभी लग रहा था कि थोड़ा कंट्रोल में रखूँ क्योंकि हिसाब से वही थोड़ा मिक्स थी और फिर भी थोड़ा ठीक था।
1: एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर

0: breaking news coming in. Rahul Gandhi has hit out at Prime Minister Narendra Modi over his last night Instagram video in which he asked people to forgive youngsters who abused him during the student protests. After meeting a group of youngsters in Tamil Nadu's Mahabalipuram, Rahul Gandhi says leaked papers, cancelled exams, years of preparation destroyed overnight. Our students are told to work honestly in a system that is not honest with them. And then Prime Minister has the audacity to speak of forgiving students. He has not met a single grieving parent. He has not sat with a single student whose future was stolen by a leaked paper. India's students do not need his forgiveness. They are owed his apology.
1: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन.
0: एंड shortly from now, we'll get you that detailed message that has come in from Rahul Gandhi, where he's criticized the video that Prime Minister Narendra Modi put on Instagram, where he said that these are young children who are misguided, they're misled, and they must be forgiven in order to ensure and learn what their mistakes are. But Rahul Gandhi, who was in Tamil Nadu's Mahabalipuram, criticized Prime Minister Narendra Modi, where he said leaked papers, cancelled exams, years of preparation destroyed overnight. Our students are told to work honestly in a system that is not honest with them. And the Prime Minister has the audacity to speak of forgiving students. He has not met a single grieving parent. He has not sat with a single student whose future was stolen by a leaked paper. India's students do not need his forgiveness. They are owed his apology. Rahul Gandhi in a full frontal attack against Prime Minister Narendra Modi after we saw a lot of praise coming for Prime Minister Narendra Modi, who spoke about forgiveness for the children who used abuses, not just against him, but largely expressing cultural shock over how these young kids could use such language. Meanwhile, Rahul Gandhi, who's hit out at Prime Minister Narendra Modi over that last night's Instagram video. Prime Minister Modi, who had asked people to forgive the youngsters who had abused him during the students' protests. But Rahul Gandhi upping the ante, and this happened when he was meeting a group of youngsters in Tamil Nadu's Mahabalipuram, where he once again raised the issue of leaked papers, cancelled exams and years of preparation destroyed overnight. While taking a dig against Prime Minister Narendra Modi, he said that our students are told to work honestly in a system that is not honest with them. And Prime Minister has the audacity to speak of forgiving students. He has not met a single grieving parent. He has not sat with a single student whose future was stolen by a leaked paper. Let's listen into what he said.
2: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu. Jantar mantar par jo kuch bhi hua, desh aur duniya ne dekha hai. Kuch shararti bachchon ne भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया. मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है. और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं. एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का. ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है, और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: Let me take this to my colleague Anmol Bali, now joining us live on broadcast. Anmol, we showed our viewers also what Rahul Gandhi has said, but really to say that these are two separate issues. One is paper leak and one is abusive language. Rahul Gandhi here seems to be mixing the two, and here also taking a dig against Prime Minister Narendra Modi, saying who is he to forgive students, where we see praises being ushered in for Prime Minister Narendra Modi in the manner in which he talks about misguided, misled students, saying that they must be forgiven, they must be shown a direction.
3: Suesha, Rahul Gandhi has just tweeted and condemned the pain of parents, because we know around dozen of students have lost their life after the NEET UG paper leak. They have killed themselves by suicide, and we have also seen that PM Narendra Modi has released various videos, and even we have seen their politics escalating on this issue. But the opposition has been targeting the BJP and PM Modi and former Education Minister Dharmendra Pradhan on this issue. Also, we have seen a huge protest in Delhi's Jantar Mantar, which led to the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. Now again, Rahul Gandhi has tweeted, he has shared a post on social media platform X with few photos of him talking with the parents of the students, those who have lost their life, those who are victim of the NEET UG paper leak. And clearly you can see now the politics is escalating on this issue, where at the one hand PM Narendra Modi is releasing video where he clearly says
0: All right, we may have lost that line with Anmol. We'll try and reconnect with him at a later point. But there you see how the story is playing out. Prime Minister Narendra Modi, who released that video on Instagram speaking about forgiving students. But Rahul Gandhi once again launching an attack against Prime Minister Narendra Modi, where he went on to say that who is he to talk about forgiving students at a time when the paper has leaked. We'll leave it at that. We'll try and get more reactions. For the moment, more breaking news coming up. And more trouble for Rahul Gandhi and other opposition MPs over the Chanda Chori skit in Parliament, where an FIR has been filed in Varanasi against the Lok Sabha leader of opposition, SPMP Avadesh Prasad, and independent MP Papu Yadav. A complaint has also been filed against the opposition MPs by a delegation of BJP Delhi leaders. The opposition MPs are being accused of insulting Lord Ram and hurting religious sentiments of Hindus.
1: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है, और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं, और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी।
0: Let me take this to my colleague Anmol Bali to get us further details. Anmol, I beg your pardon, it's Sushant Mehra joining us on the broadcast. Sushant, जिस तरह से अब ना सिर्फ बीजेपी लीडर्स पर कई तरह की कंप्लेंट्स अब लॉन्च की गई हैं उन सभी मेंबर्स के अगेंस्ट जिन लोगों ने ये स्किट परफॉर्म किया, कहकर कि ये हिंदू रिलीजन के लिए बहुत इंसल्टिंग है।
4: देखिए सोशा, जिस तरीके से कल संसद के अंदर पप्पू यादव की तरफ से जो भी एक्ट किया गया उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद हो चाहे वो हिंदू संगठन हो, वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और यही वजह है कि जिसको लेकर के आज बीजेपी का जो डेलीगेशन है उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर सांसद पप्पू यादव और सांसद अयोध्या से जो है अवधेश सिंह के खिलाफ और उसके साथ नेता प्रतिपक्ष यानी लोकसभा में जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो शिकायत दी है। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जंतर मंतर पर जो है वो प्रदर्शन भी किया गया और हवन भी किया गया। लेकिन सीधे तौर पर अब इस पूरे मुद्दे पर अगर देखा जाए तो सत्ता दल जो है वो विपक्ष को अब घेरने में जुड़ गई है कि जिस तरीके से पप्पू यादव की तरफ से जो एक्ट किया गया है संसद के अंदर वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को, सनातन की भावनाओं को आहत करने वाला है और इस पर जो है वो माफी मांगनी चाहिए, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। इसी के मांग को लेकर के जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर जो है वो कंप्लेंट दी गई। इसके अलावा कई और लोग भी जो इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर शामिल थे उनको लेकर के भी शिकायत जो है वो दी गई है ताकि उनके ऊपर भी एक्शन हो, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना हुई है वो बीजेपी का मानना है कि बहुत ही शर्मनाक घटना है। अगर इस तरीके की कोई एक्ट होती है तो क्यों आप किसी एक व्यक्ति की, एक धर्म की, समाज की आस्था से जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी को लेकर की शिकायत जो है वो फिलहाल दी गई है।
0: जी सुशांत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। More breaking news coming in, a shocker that is coming in from NC Chief Farooq Abdullah over the Kulgam terror attack in which two migrant laborers were killed. Farooq Abdullah has questioned the timing of the terror attack, asking why do such incidents take place only when they seek statehood for Jammu and Kashmir. Listen in to that statement.

0: गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री डीके शिव कुमार जी, सांसद यद्वीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार जी, विधायक विजेंद्र येदियुरप्पा जी, के हरीश गौड़ा जी, अन्य महानुभाव, पूज्य संतगण और भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं मैसूरू की अधिष्ठात्री देवी मां चामुंडेश्वरी को प्रणाम करता हूं। अभी दो दिन पहले ही हम सभी ने गुरु पूर्णिमा भी मनाई है। आप सब जानते हैं मेरी यात्रा जहां से शुरू हुई और आज मैं जहां हूं, इसमें रामकृष्ण मिशन का बहुत अहम योगदान है। मैं 3 महीने पहले हावड़ा में बेलूर मठ गया था, सभी पूज्य संतों से सत्संग करने का अवसर मिला था। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे फिर मैसूरू में श्री रामकृष्ण आश्रम से जुड़े संतों से, मेरे गुरु बंधुओं से मिलने का, उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। आप सभी की उपस्थिति की वजह से आज मैसूरू की इस पवित्र भूमि पर मुझे एक अलग ही ऊर्जा अनुभव हो रही है। मैं आप सभी संतों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहां के मंदिर, यहां की परंपराएं और उत्सव, मैसूरू का दशहरा, यहां के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है। और ये देखकर बहुत संतोष मिलता है कि इस शहर ने इस विरासत को उसी कुशलता से सहेजा भी है, संवारा भी है। श्री रामकृष्ण आश्रम और स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियां भी मैसूरू की विरासत का ही एक समृद्ध हिस्सा है। कुछ देर पहले मैं उस ऐतिहासिक भवन में भी गया था जहां स्वामी विवेकानंद जी ने अपने प्रवास के दौरान कुछ समय बिताया था। कर्नाटका के कितने ही विद्वान और मनीषी इस स्थान से जुड़े रहे हैं। राष्ट्र कवि कुवेंपु जैसे महापुरुष जब मैसूर में थे, उनका भी रामकृष्ण आश्रम से गहरा जुड़ाव था। आज स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर यानी विवेक स्मारक के उद्घाटन के जरिए हम इस मिशन को नया विस्तार दे रहे हैं। इसके लिए मैं श्री रामकृष्ण आश्रम और इसके जुड़े सभी विद्वानों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, व्यक्ति से विभूति का निर्माण एकाएक नहीं होता, इसके लिए हमें जीवन की अनगिनत परीक्षाएं देनी होती है, साधना करनी होती है, तप करना होता है, खुद को तपाना पड़ता है, खपाना पड़ता है। ख्याति के बाद तो संसार पीछे खड़ा होता है, लेकिन तप के समय महान विभूतियों को पहचानना आसान नहीं होता। जो साधक को तपस्या में पहचानता है वो उसकी सिद्धि का सहभागी भी होता है। इसलिए भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में मैसूर का इतना अहम योगदान था। करीब 130 वर्ष पहले स्वामी जी एक युवा सन्यासी के रूप में भ्रमण करते हुए मैसूर आए थे। तब उनकी प्रसिद्धि वैसी नहीं थी, लेकिन विचार उतने ही ऊंचे थे। उस समय उन्हें जिन लोगों ने पहचाना, जो उनके साथ जुड़े, उनमें से एक प्रमुख नाम मैसूर के तत्कालीन महाराजा के भी था। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे तो उन्होंने वहां से मैसूर के तत्कालीन महाराजा को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने स्वयं महाराजा के सहयोग का उल्लेख किया था। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय चेतना को आत्मसात किया था, उन्होंने शास्त्रों को आत्मसात किया था। जो कहते हैं, परम परोपकारार्थ यो जीवति स जीवति, अर्थात वास्तव में वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है। इसी मंत्र पर चलते हुए मैसूर के इस श्री रामकृष्ण आश्रम ने पिछले वर्ष अपने 100 साल पूरे किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं हो या प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, श्री रामकृष्ण आश्रम ने स्वामी विवेकानंद जी की विरासत को जीवंत रखा है। मुझे विश्वास है विवेक स्मारक साधकों और श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक उत्थान का एक तीर्थ बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा थी शिव ज्ञाने जीव सेवा, यानी जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। हमें इस विवेक स्मारक में इसलिए ऐसे युवाओं को गढ़ना है जिनके लिए समाज और राष्ट्र के हित, गरीब वंचित के दुख अपने सुख दुख से ऊपर हो, जिन युवाओं के लिए राष्ट्र प्रथम ही सर्वोपरि मंत्र हो, मां भारती की सेवा ही जिनका जीवन लक्ष्य हो। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की नई यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवा के सामर्थ्य से। आज भारत एआई, डीपटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अध्याय लिख रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। वो मुद्रा लोन के जरिए नई शुरुआत कर रहा है। वो देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है। साथियों, किसी भी देश में युवाओं का सामर्थ्य तभी उस राष्ट्र की शक्ति बनता है जब उसे सही अवसर मिले, जब उसे सही दिशा मिले और जब उसे अपनी ही धरती पर बड़े सपने देखने, उन्हें पूरा करने का भरोसा मिले। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे शिक्षा संस्थानों की होती है। मुझे खुशी है कि आज भारत में शिक्षण संस्थाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। चार हजार से ज्यादा नई आईटीआई बनाई गई है। 9 नए आईआईएम, 7 नई आईआईटी और 13 नए एम भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है। साथियों, एक और हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भारत के युवाओं को 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करने का माध्यम बन रही है। साथियों, स्कूली शिक्षा में भी बड़े स्तर पर काम हुआ है। देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल विकसित किए गए हैं। शिक्षा केवल किताबी न रहे, बच्चों में इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, इसके लिए 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हुई है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्र उत्थान के लिए शिक्षा के साथ साथ समानता को भी उतना ही अहम मानते थे। शिक्षा में भेदभाव न हो, अवसरों में भेदभाव न हो, आज ये देश का विजन बन गया है। आज बेटियां भी सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही हैं। एनडीए में बेटियां राष्ट्र के लिए योगदान दे रही हैं। आज मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई मातृभाषा में करने की सुविधा हो गई है। इससे भाषा के आधार पर अवसरों में होने वाले भेदभाव पर लगाम लग रही है। साथियों, युवा शक्ति का स्वास्थ्य अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे रहना उतना ही जरूरी है। जो देश खेलों को महत्व देते हैं, वहां के युवाओं में इन तीनों गुणों का तेजी से विकास होता है। इसलिए आज खेलों को राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा जा रहा है। खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर गेम्स जैसे आयोजनों ने देश भर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है। आज देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। खेलो इंडिया सेंटर के माध्यम से सुविधाएं बढ़ रही है। गांवों से लेकर छोटे शहरों तक नई प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है। और साथियों, आज इस अभियान के परिणाम भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है। हमारे खिलाड़ी नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हमारी बेटियां देश का गौरव बढ़ा रही हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की तरह हमें विवेक का स्मारक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। ऐसे स्थान पर मैं हमारे युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं। साथियों, मैसूरू को अक्सर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में स्थान मिला है। मैं इसके लिए यहां के लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। क्या इस अवसर पर हम ये संकल्प ले सकते हैं कि भविष्य में स्वच्छता के संकल्प को निरंतर मजबूत करते रहेंगे? हमें यहां की प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित करना चाहिए। हमें पर्यावरण से जुड़े संकल्प लेने चाहिए। हमें पानी की हर बूंद बचाने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा। साथियों, आज ही यहां वाल्मीकि रामायण के कन्नड़ा अनुवाद का विमोचन भी हुआ है। मैं कन्नड़ा भाषा से जुड़ी एक अपील भी करना चाहता हूं। कर्नाटका महान लेखक और कवियों की धरती है। कन्नड़ा भाषा, कन्नड़ा भाषी लोग हमेशा से पढ़ने की संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। स्मार्टफोन के इस युग में इस स्वभाव को और बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या हम युवा पीढ़ी को कन्नड़ा साहित्य से गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? साथियों, मैसूरू अपने सिल्क, चंदन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जब भी हम किसी को उपहार दें तो क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो किसी भारतीय के हाथों और पसीने से बनी चीज हो? इससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही एक और परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरह के भारत का सपना देखा था, उसे पूरा करने का दायित्व आज की पीढ़ी पर है। मुझे विश्वास है विवेका स्मारक इसके लिए एक ऊर्जा स्रोत का काम करेगा। मैं एक बार फिर यहां एकत्र पूज्य संतजनों, गुरु बंधुओं और मैसूर के लोगों को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू ऑनरेबल चीफ प्राइम मिनिस्टर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स।
2: And that's Prime Minister's big message coming in, where he says that the youth of India is making India proud in every sector. The youth is driving India's growth story. This is Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Viveka Smarak in Mysuru. He put out the biggest message for the youth in Mysuru. He not just praised the youth but also hailed India's education system, saying that the youth are our foundation. The youth is driving India's growth story. The youth is making us proud in every sector. Prime Minister Narendra Modi at that big event, as he just concluded that address, but primarily sending out that big message for the youth of the country, hailing the power of India's youth. And there you just heard as Prime Minister Narendra Modi concluded that address while speaking from Mysuru, where he was to inaugurate the Swami Vivekanand Cultural Youth Center. Prime Minister Narendra Modi, while delivering that address, put out that big message for the youth of the country, where he not just praised India's education system, but he also said that it is the youth of the country that is driving its growth story. Let's once again listen into that excerpt.
0: साथियों, किसी भी देश में युवाओं का सामर्थ्य तभी उस राष्ट्र की शक्ति बनता है जब उसे सही अवसर मिले, जब उसे सही दिशा मिले और जब उसे अपनी ही धरती पर बड़े सपने देखने, उन्हें पूरा करने का भरोसा मिले। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे शिक्षा संस्थानों की होती है। मुझे खुशी है कि आज भारत में शिक्षण संस्थाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। चार हजार से ज्यादा नई ITI बनाई गई है। 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MP स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है। साथियों, एक और हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत के युवाओं को 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करने का माध्यम बन रही है। साथियों, स्कूली शिक्षा में भी बड़े स्तर पर काम हुआ है। देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल विकसित किए गए हैं। शिक्षा केवल किताबी न रहे, बच्चों में इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, इसके लिए 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हुई है।
2: I take this to my colleague Nagarjun Dwarkanath now joining us on the broadcast. Nagarjun, the big message coming in from Prime Minister Narendra Modi, where he out and out centered his address around the youth of the country, not just hailing India's education system, but also saying that it is the youth that is responsible for India's growth story.
3: Absolutely. Prime Minister Modi had come to Mysore for an event at the Ramkrishna Math, and then he spoke of the youth and the potential of the youth of the country, where the potential transforms into national strength, and only which that they can receive the right opportunities and right direction, the confidence will be there to dream big and realize that dreams in the Indian soil as well. And he also spoke about how the country has now around 1.4 lakh MBBS seats, and the medical colleges have now gone above 800 odd colleges, and the national education policy has become a vehicle to prepare India's youth to face the first 21st century world and be a part of this competitive world, is what the Prime Minister has said. This comes at a crucial time when recently we have seen what happened in Jantar Mantar and the protests, and the series of videos the Prime Minister has made on Instagram also. And now one more appeal from the soil of Mysore, where PM has spoken about how the potential of youth can change the direction the country moves.
2: Oh yes, and after all the negativity and the criticism that has come in, Prime Minister Narendra Modi, not just where he took the higher moral ground last night through that Instagram message, saying that the youth that has missed that must be given a direction and they should not be punished like that. And now we see the sort of emphasis that the Modi government is putting on the youth of the country, to what they need, what they require, how they can grow and how they can make the country proud.
3: Well, absolutely true. That's episode comes after the negativity that had happened earlier on Instagram, and Prime Minister last night itself spoke about how the country should forgive this episode and move forward from this episode as well. And now once again drawing the focus back to the potential of the youth and how the country now has 1.4 lakh MBBS seats, and because the whole controversy was about NEET exam and the students thought change about the NEET process, now he's also talking about what the government has done in the last 10 years, 1.4 lakh MBBS seats and also 800 odd medical colleges across the country.
2: Nagarjun, I request you to stay on with us as we listen into some more excerpts of what Prime Minister Narendra Modi said in Mysuru.
0: युवाओं के सामर्थ्य से अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। वो मुद्रा लोन के जरिए नई शुरुआत कर रहा है, वो देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है।
2: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीकिंग देयर इन मैसूरू दैट एज ही आल्सो forgave the youth who abused him during the student protests at Jantar Mantar, saying the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Prime Minister Narendra Modi assuring them that he is working for their future and said that everyone must work together for the country. Meanwhile, following the outrage, the teenager issued an apology for abusing Prime Minister Modi and promised never to repeat such remarks. Here's that report.
4: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ।
5: Forgiveness, not punishment. In an unprecedented gesture, Prime Minister Modi forgave the youth who hurled abuses at him during the student protests and gave them a chance to reform. In a recorded message released on Friday night, Prime Minister Narendra Modi said he was culturally shocked by the language used against him and his mother.
4: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
5: Prime Minister Modi forgave the abusers and urged society to guide the children instead and wish them the best.
4: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
6: मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था।
5: The teenager whose video abusing Prime Minister Modi went viral issued an apology following massive outrage and the registration of an FIR against her.
6: वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
5: New details have also emerged about the girl's background. Speaking exclusively to India Today, the owner of the salon where she had enrolled to learn nail art said that she had used a fake name during training and had refused to submit her Aadhaar card during the admission process.
7: वो काम करने नहीं आई थी, काम सीखने के लिए आई थी और करीब 25-26 मई में आई थी और वो करीब हमारे वहाँ लास्ट रही 9 जून तक। उसे 2-3 दिन काम करने के बाद हम उनसे ये बोले वे अपना आधार कार्ड ले आओ, तो 2-3 दिन तो कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, अभी आज दुकान बंद है, ऐसे बहाना करती रही। यहाँ पे जो नाम बताई थी वो मैंसिल नाम बताई थी। तो 9 जून को हमने कहा ठीक है, अगर आप जो है आधार कार्ड लेके आ सकती हो तो कल से आना, नहीं हमारे वहाँ काम सीखने के लिए मत आना।
5: Meanwhile, CJP founder Abhijit Deepke criticized the BJP over the case filed against the teenager.
8: अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए? कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की? गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है। अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है।
5: The politics erupted, targeting the Prime Minister, saying that it should be him who should apologize to the youth. LOP Rahul Gandhi has set out at Prime Minister Narendra Modi, saying India's students do not need his forgiveness, but are instead owed his apology.
9: The NDA, on the other hand, hailed Prime Minister Modi. Pawan Kalyan called Prime Minister Modi the greatest leader of all time.
10: Roju poddunne Pradhan Mantri gari statement chusanu. Ayana tittina enni doshincharo varini kuda pedda manasutoki kshaminchar ayana. Alanti Pradhan Mantri gariki mee paadalaku nenu namaskaram teliyajestunnanu. నిజంగా మీ ఉన్నతి మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
9: Abuses directed at the Prime Minister are unacceptable, regardless of the circumstances. But with Prime Minister Modi publicly forgiving the youngsters and indicating that they should be guided rather than punished, shows compassion for the youth in India. Bureau Report, India Today.
2: We cut across to more breaking news coming in. Political fight over Kaveri water escalates as DMK has approached Supreme Court seeking immediate directions for the release of Kaveri water to Tamil Nadu. The application highlights the severe hardship faced by lakhs of farmers in the Kaveri Delta due to the non-release of water by the state of Karnataka, despite the binding directions issued by the statutory authorities constituted under the Kaveri Water Management Scheme, and seeks urgent intervention of the Honorable Supreme Court to protect the livelihood of the farming community and ensure compliance with its judgment. That's the latest that is just coming in on the issue of Kaveri water, where DMK has now approached the Supreme Court seeking immediate directions for the release of Kaveri water to Tamil Nadu. But this has obviously led to an escalation in the political fight, where the application that highlights the severe hardship that is being faced by lakhs of farmers in the Kaveri Delta due to the non-release of water by the state of Karnataka, despite the binding directions issued by the statutory authorities constituted under the Kaveri Water Management Scheme, and seeks urgent intervention of the Honorable Supreme Court to protect the livelihood of the farming community and ensure compliance with its judgment. Now remember, this is a move that has been taken by the DMK on behalf of the state of Tamil Nadu, where DMK has approached Supreme Court seeking immediate directions for the release of Kaveri water to Tamil Nadu. Moving on, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 5,000 crore rupees worth Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Andhra Pradesh. Built in the first phase to handle 6 million passengers annually, the airport has been planned for future expansion to a capacity of 40 million passengers per year. Named after freedom fighter Alluri Sitaram Raju, the airport is being described as the gateway of the East. Let's take a look at this news report.

0: And first, Safi, begin with breaking news coming in on Pappu Yadav, the man who seems to be in trouble clearly after several complaints that have been filed over the skit that was performed by him while targeting the government over Chanda Chori. Now, opposition has defended Pappu Yadav's act, saying that this was a mere skit. Opposition has defended Pappu Yadav and saying that this... All they were doing was highlighting Chanda Chori. What's wrong with that? Pappu Yadav has said that is it wrong to protest? And how does that turn into an insult to Sanatan? That is how Pappu Yadav has responded after complaints have been filed against him and the opposition members over how they performed this skit in a bid to target the government over Ram Mandir Chanda Chori. However, complainant now saying that this was an insult to Sanatan Dharam. Let's listen in to what Pappu Yadav has said.
1: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है. मंदिर की रक्षा करना गलत है. मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है. देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है. हनुमान जी को नचाना सही है. गुड्डी में राम को उड़ाना सही है.
0: Taking this to my colleague Sushant Mehra, joining us live on the broadcast. Sushant, tabhi ye Pappu Yadav ka response aaya hai, jahan par wo apne aap ko defend kar rahe hain, keh rahe hain ki sawal poochne mein kya galti hai. But fact is ki ek section hai jo keh rahe hain ki ye Sanatan Dharam ki insult hai.
2: देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से पप्पू यादव ने संसद के अंदर एक एक्ट किया, उसके बाद आज भी जो है उनकी तरफ से एक वीडियो जारी हुआ किस तरीके से वो जो है भगवान की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे थे. कहीं ना कहीं वो एक डिपेंड कर रहे नजर आ रहे थे कि वो किसी धर्म को कहीं पर भी किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते. लेकिन वहीं दूसरी तरफ का जो सत्ता पक्ष है, चाहे वो बीजेपी के तमाम सांसद हो, विधायक हो, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद है, वो अब खुलकर के सामने आ चुका है पप्पू यादव के अगेंस्ट कि किस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म का, जो लोग सनातन में आस्था रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया. और यही वजह है जिसको लेकर के एक के बाद एक कई सारी कंप्लेंट्स जो है वो पप्पू यादव के खिलाफ जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर जो है वो दर्ज कराई गई. आज बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और बीजेपी की दिल्ली के जो तमाम विधायक है उनकी तरफ से भी जो है ये जो शिकायत जो है वो दर्ज की गई है. हालांकि पुलिस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद FIR जो है वो दर्ज की जाएगी. लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो विश्व हिंदू परिषद हो, वो भी इस पूरे मामले को लेकर के पप्पू यादव को लेकर के आज जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया. इसके अलावा तमाम अलग अलग जो दल है वो इसका कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं. आने वाले दिनों में देखा जाए तो पप्पू यादव नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम नेता जो कि लोकसभा में जब ये एक्ट हो रहा था, चाहे वो विपक्षी नेता राहुल गांधी हो, उनको लेकर के भी नाराज किया. अयोध्या से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रताप सिंह, उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो नजर आ रही है. जो पीछे सांसद खड़े हैं उनको लेकर के भी नाराजगी कि आखिरकार अगर आपको किसी चीज का विरोध करना है तो विरोध के लिए भी विरोध का ये जो तरीका था पप्पू यादव की तरफ से जो एक्ट किया गया वो बिल्कुल गलत था और उस पर सपोर्ट जिन जिन सांसदों ने किया उसको लेकर के शिकायत जो है वो फिलहाल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर दी गई.
0: जी सुशांत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए. And well, independent MP Pappu Yadav's satirical skit outside the parliament has triggered a major row. Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest to pocket the cash, saying theft is in our blood. Then came LOP Rahul Gandhi, who made a symbolic donation. Pappu Yadav is now in damage control mode and has released a shivling-worshipping video amid backlash over that skit, claiming he respects Sanatan Dharam. The MP has said his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints. But trouble is mounting for the opposition leaders. Varanasi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avadhesh Prasad. BJP delegation led by MP Basuri Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protests on the parliament premises hurt religious sentiments of followers of Sanatan Dharam. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play protests outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharam and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram.
3: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी।
4: आप पब्लिसिटी के लिए कोई भी सांसद तमाशा सनातन धर्म का नहीं बना सकते, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए एक आस्था का विषय है और आप यूं तमाशा बना रहे हैं धर्म का। आप राम जी के तस्वीर को किसी के चरणों पे, आप किसी के पैर पे रख रहे हैं, तो ये हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे और इसके लिए आज जंतर मंतर पे हम सभी साधु संत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इससे पहले भी देखा गया कि आपकी, आपका एटीट्यूड सिंपल है, यू आर अ हार्ड कोर क्रिमिनल, एक हार्ड कोर क्रिमिनल जिनपे 41 रजिस्टर्ड केसेस है, अनरजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा, हलफनामे में आप देखिए 41 रजिस्टर्ड केसेस है, इनको हलफनामा भरने में मुझे लगता है 4-5 घंटे लगते होंगे, तो उसका आप पैसा वसूल करने के लिए इस प्रकार के सस्ते स्टेटमेंट देने आप पार्लियामेंट के बाहर आप करेंगे और पूरे विश्व भर में सनातनियों का अपमान करेंगे, तो वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज लिखित में हम शिकायत भी कर रहे हैं, DCP जो संसद मार्ग है वहां पे हमने लिखित में शिकायत दर्ज कराया है।
0: More breaking news coming in. The All India Trinamool Congress has moved to Supreme Court challenging the Enforcement Directorate's decision to freeze its bank accounts. Supreme Court is scheduled to hear the TMC's plea on the 3rd of August. A bench comprising Justice M.M. Sundaresh and Justice Prasanna B. Varale will hear the matter. The ED has alleged that 133.84 crore rupees was transferred from one of the party's bank accounts to a private company. The agency claims that these funds were diverted improperly and that money laundering was involved. The ED had frozen three of the party's bank accounts. The TMC had initially approached the Kolkata High Court against this action, but the High Court refused to grant interim relief. TMC has now challenged the High Court's order in the top court. Let me take these details to my colleague Anusha Mathur, who's gathering on how exactly the TMC is now taking the matter to the top court and what's expected next.
5: Well, Ashesha, the Supreme Court is set to hear this matter now on Monday. The TMC has moved to Supreme Court, and the important point to note is that the Calcutta High Court have declined to hear their plea because they said that the investigation is at an interim stage, that at this interim stage, they are not inclined to interfere. The TMC in its plea before the Supreme Court has pointed out that the freezing of accounts in this manner has directly affected the functioning of the party, that this is an action that the ED could not have done in the manner that it was done, and that they were not given proper hearing in this matter. Now, what the interim order, remember, this was in with regards to interim orders, because it is also further said that the action that was undertaken by the ED was arbitrary, it was mechanically undertaken, that they did not look into all aspects before they froze these six accounts. So we'll have to wait and see how the matter is taken by the Supreme Court. There are two aspects, really. One, whether the ED's action was arbitrary, and two, whether the balance of convenience lies for the banks to be unfrozen at this stage of the investigation, and three, whether the High Court could interfere with and release the accounts when the investigation, according to the ED, is at an interim stage. These three aspects are what the court will have to see. We will see what the Supreme Court now has to say or what is argued before the court on Monday. Back to you.
0: All right, Anisha, thank you for getting us those details. Terror strikes Jammu and Kashmir once again. Two migrant labourers from Chhattisgarh have been killed in a targeted terror attack in Kulgam, with Lashkar-e-Taiba offshoot claiming responsibility as security forces launch massive search operations and high alert is sounded from Kulgam to the LOC district to Rajouri. The attack has reignited the political battle over Jammu and Kashmir's future, even as the demand for Jammu and Kashmir's statehood gathers political momentum. Chief Minister Omar Abdullah has made it clear that the fight is far from over. Omar Abdullah stated that a protest at Jantar Mantar alone will not restore statehood, asserting that the agitation must continue until the centre delivers on what he says was a promise already made. BJP, meanwhile, has condemned the attack, calling it Pakistan-backed terrorism and vowing that those behind the bloodshed will not be spared. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deosai has announced 20 lakh rupees ex gratia for the families of the victims, termed the Kulgam attack an assault on humanity and national unity, and vowed strict punishment for the terrorists while assuring dignified last rites for the deceased.
6: Units of police, CRPF army have been mobilized, and the entire area is being scanned as I speak to you. So targeted attacks are back, soft targets are being hit again by the TRF, and challenge for the security agents right now is to secure these areas where these laborers are working and ensure that there is a sense of security reinstilled in them. We spoke to laborers here, hundreds of whom work in brick kilns and otherwise, and they said that they have advisory from the police to stay where they are, and in fact not move out, not venture out in the evenings when it's dark, and also early mornings. And if at all they find anything suspicious, connect with the local police station or police component. So that really is the situation right now. But targeted attack after a long time. And if intelligences are to believe, this may not be the last one. And that is why the security agencies are racing against time to catch these people and stop them in their tracks and not allow any further such incidents happening in the future. With Campus and Tariq Lone, Meet Farid Kulgam for India Today.
7: हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके। सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो।
8: इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं।
9: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
10: एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया, और उसके बाद आज निहत्थे निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया इन कायर और बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की, इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
11: आतंकवादियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों दिवंगत आत्मा को अपनी चरणों में स्थान दें और उनके मृत आत्मा को शांति प्रदान करें, और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी।
0: Prime Minister Modi has inaugurated the 5,000 crore rupees worth Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Andhra Pradesh. Built in the first phase to handle 6 million passengers annually, the airport has been planned for future expansion to a capacity of 40 million passengers per year. Named after freedom fighter Alluri Sitaram Raju, the airport is being described as the gateway of the East. Take a look at this news report.

0: are watching India Today.
1: Hello and welcome. You're watching India Today. I'm Suesha Savan, getting you the top headlines first up. Prime Minister Modi's big message for the youth in Mysuru says youth are driving India's growth story and needs correct guidance to flourish. NSA Ajit Doval also urged youngsters to put nation above personal interests. Prime Minister Modi forgives students who abused him during Jantar Mantar protests, urges society to guide misled children. Rahul Gandhi hits out at Prime Minister, says students don't need his forgiveness but are instead owed an apology. Trouble for Rahul Gandhi and others over Ram Mandir Chanda Chori skit in Parliament. FIR filed in Varanasi on complaint by seers. BJP leaders filed complaint in Delhi seeking FIR, accusing them of insulting Hindu sentiments. Kaveri water wars intensify. DMK moves Supreme Court, urges directions be given for immediate release of water to Karnataka. Stalin slams Chief Minister Vijay, says his approach to talk with the Congress government has failed. Two non-local migrant workers from Chhattisgarh killed in a terror attack in Jammu and Kashmir's Kulgam. Forces launched massive search operations to find the terrorists. Lashkar offshoot TRF claims responsibility for the attack. Super Saturday for India at Commonwealth Games in Glasgow. Preeti Pawar and Jasmine Lamboria win gold medals in boxing 54 kgs and 57 kgs events respectively. Soman Rana wins gold in men's shot put F57 event, a first for India at the Games. Prime Minister Modi has forgiven the youth who abused him during the student protests at Jantar Mantar, saying the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Prime Minister also assured them that he is working for the future and said everyone must work together for the country. Meanwhile, following the outrage, the teenager issued an apology for abusing Prime Minister Modi and promised never to repeat such remarks. We're getting you this report.
2: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का, सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ।
3: Forgiveness, not punishment. In an unprecedented gesture, Prime Minister Modi forgave the youth who hurled abuses at him during the student protests and gave them a chance to reform. In a recorded message released on Friday night, Prime Minister Narendra Modi said he was culturally shocked by the language used against him and his mother.
2: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
3: Minister Modi forgave the abusers and urged society to guide the children instead and wish them the best.
2: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
4: मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था।
3: The teenager whose video abusing Prime Minister Modi went viral issued an apology following massive outrage and the registration of an FIR against her.
4: वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
3: New details have also emerged about the girl's background. Speaking exclusively to India Today, the owner of the salon where she had enrolled to learn nail art said that she had used a fake name during training and had refused to submit her Aadhaar card during the admission process.
5: वो काम करने नहीं आई थी, काम सीखने के लिए आई थी और करीब 25-26 मई में आई थी और वो करीब हमारे वहाँ लास्ट रही 9 जून तक। इसे 2-3 दिन काम करने के बाद हम उनसे ये बोले वे अपना आधार कार्ड ले आओ, तो 2-3 दिन तो कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, अभी आज दुकान बंद है, ऐसे बहाना करती रही। यहाँ पे जो नाम बताई थी वो मैंसिल नाम बताई थी, तो 9 जून को हमने कहा ठीक है, अगर आप जो है आधार कार्ड लेके आ सकती हो तो कल से आना, नहीं हमारे वहाँ काम सीखने के लिए मत आना।
3: Meanwhile, CJP founder Abhijit Deepke criticized the BJP over the case filed against the teenager.
6: अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। गाली देना इज नॉट अ क्राइम, अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है। अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है।
3: The politics erupted, targeting the Prime Minister, saying that it should be him who should apologize to the youth. LOP Rahul Gandhi has set out at Prime Minister Narendra Modi, saying India's students do not need his forgiveness, but are instead owed his apology. The NDA, on the other hand, hailed Prime Minister Modi. Pawan Kalyan called Prime Minister Modi the greatest leader of all time.
7: రోజు పొద్దున్న ప్రధానమంత్రి గారి స్టేట్మెంట్ చూశాను, ఆయన తిట్టిన ఎన్ని దూషించారో వారిని కూడా పెద్ద మనసుతోటి క్షమించారు ఆయన. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారికి మీ పాదాలకు నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. నిజంగా మీ ఉన్నతి, మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
3: Abuses directed at the Prime Minister are unacceptable, regardless of the circumstances. But with Prime Minister Modi publicly forgiving the youngsters and indicating that they should be guided rather than punished, shows compassion for the youth in India. Bureau Report, India Today.
1: And well, independent MP Pappu Yadav's satirical skit outside the parliament has triggered a major row. Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest to pocket the cash, saying, "Theft is in our blood." Then came LOP Rahul Gandhi, who made a symbolic donation. Pappu Yadav is now in damage control mode and has released a shivling worship video amid backlash over his skit, claiming he respects Sanatan Dharam. MP has said that his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints. But trouble is mounting for the opposition leaders. Varanasi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad. BJP-led delegation by MP Basuri Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protest on the parliament premises hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharam. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play protests outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharam and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram.
8: अरे आफ्टर मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव वाज सीन इन सैफरन क्लोथ्स टारगेटिंग द बीजेपी गवर्नमेंट प्लेइंग अ स्किट ओवर द एलिज्ड एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स इन राम मंदिर इशू द विश्व हिंदू परिषद हैज नाउ हिट द स्ट्रीट्स अगेंस्ट पप्पू यादव दे आर सेइंग दैट ही हैज हर्ट द सेंटीमेंट्स ऑफ करोड़ ऑफ हिंदूज लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड करंटली आई एम हियर एट दिल्ली जंतर मंतर वेर दे हैव ऑर्गेनाइज्ड अ सद्बुद्धि हवन एंड दे आर काइंड ऑफ सिंबोलिकली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ऑपोजिशन लीडर्स एंड पप्पू यादव दोज हू हैव पार्टिसिपेटेड एंड प्लेड अ स्किट यस्टरडे इन द पार्लियामेंट वेर दे हैव टारगेटेड द बीजेपी गवर्नमेंट ओवर द एलिज्ड राम मंदिर फंड स्कैम एंड क्लियरली हियर इन द विजुअल्स आई विल shows you that hundreds of saints from the various corners of the national capital have gathered here in the Delhi's Jantar Mantar and they're protesting against the Pappu Yadav and other.
9: सब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है. मंदिर की रक्षा करना गलत है. मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है. देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है. हनुमान जी को नचाना सही है. गुड्डी में राम को उड़ाना सही है.
3: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है. और इसीलिए हम आज FIR की मांग दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी.
1: Terror strikes in Jammu and Kashmir once again where two migrant laborers from Chhattisgarh were killed in a targeted terror attack in Kulgam with Lashkar-e-Taiba offshoot claiming responsibility for the attack as security forces launched massive search operations and high alert has been sounded in Kulgam to the LOC district of Rajouri. The attack has reignited the political battle over Jammu and Kashmir's future. Even as the demand for Jammu and Kashmir statehood gathers political momentum, Chief Minister Omar Abdullah has made it clear that the fight is far from over. Omar Abdullah stated that a protest at Jantar Mantar alone will not restore statehood, asserting that the agitation must continue until the centre delivers on what he says was a promise already made. BJP, meanwhile, has condemned the attack, calling it Pakistan-backed terrorism and vowing that those behind the bloodshed will not be spared. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai has announced 20 lakh rupees ex gratia for the families of the victims, termed the Kulgam attack an assault on humanity and national unity and vowed strict punishment for the terrorists while assuring dignified last rites for the deceased.
10: Mor bhai Deepak Ratre, jo Jammu Kashmir hamla hoi se, ola raat 8 baje ke utha karke puchin hai ki tain kahan ke rehne walas aur tar tor dharm kaaye तो हिंदू कही तमारी नहीं और इस पार्ट डे मोर भाई दीपक रात्रे खत्म हो गए है.
11: हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था. लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे. हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके. सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो.
12: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले. इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है. मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं.
13: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है. लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं. ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है. तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए. मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है. और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी. दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
14: एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया और उसके बाद आज निहत्थे निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया इन कायर और बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की, इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
1: Prime Minister Modi has inaugurated the 5,000 crore rupees worth Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Andhra Pradesh. Built in the first phase to handle 6 million passengers annually, the airport has been planned for future expansion to a capacity of 40 million passengers per year. Named after freedom fighter Alluri Sitaram Raju, the airport is being described as the gateway of the East. Take a look at this news report.

0: हमारे टैलेंटेड युवाओं की प्रतिभा का लाभ आंध्र प्रदेश और देश को ज्यादा से ज्यादा मिले, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारा फोकस अब सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक इंडस्ट्री पर है। विशाखापट्टनम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: are watching India Today.
1: Prime Minister Modi has forgiven the youth who abused him during the student protests at Jantar Mantar, saying the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Prime Minister also assured them that he is working for the future and said everyone must work together for the country. Meanwhile, following the outrage, the teenager issued an apology for abusing Prime Minister Modi and promised never to repeat such remarks. We're getting you this report.
2: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का, सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
3: Forgiveness, not punishment. In an unprecedented gesture, Prime Minister Modi forgave the youth who hurled abuses at him during the student protests and gave them a chance to reform. In a recorded message released on Friday night, Prime Minister Narendra Modi said he was culturally shocked by the language used against him and his mother.
2: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
3: Minister Modi forgave the abusers and urged society to guide the children instead and wish them the best.
2: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको

0: प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था।
2: The teenager whose video abusing Prime Minister Modi went viral issued an apology following massive outrage and the registration of an FIR against her.
1: वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
2: New details have also emerged about the girl's background. Speaking exclusively to India Today, the owner of the salon where she had enrolled to learn nail art said that she had used a fake name during training and had refused to submit her Aadhaar card during the admission process.
3: वो काम करने नहीं आई थी, काम सीखने के लिए आई थी और करीब 25-26 मई में आई थी और वो करीब हमारे वहाँ लास्ट रही 9 जून तक। उसे 2-3 दिन काम करने के बाद हम उनसे ये बोले वे अपना आधार कार्ड ले आओ, तो 2-3 दिन तो कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, अभी आज दुकान बंद है, ऐसे बहाना करती रही। यहाँ पे जो नाम बताई थी वो मैंसिल नाम बताई थी, तो 9 जून को हमने कहा ठीक है, अगर आप जो है आधार कार्ड लेके आ सकती हो तो कल से आना, नहीं हमारे वहाँ काम सीखने के लिए मत आना।
2: Meanwhile, CJP founder Abhijit Deepke criticized the BJP over the case filed against the teenager.
4: अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। गाली देना इज नॉट अ क्राइम, अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है। अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है।
2: The politics erupted, targeting the Prime Minister, saying that it should be him who should apologize to the youth. LOP Rahul Gandhi has set out at Prime Minister Narendra Modi, saying India's students do not need his forgiveness, but are instead owed his apology. The NDA, on the other hand, hailed Prime Minister Modi. Pawan Kalyan called Prime Minister Modi the greatest leader of all time.
5: రోజు పొద్దున్నే ప్రధానమంత్రి గారి స్టేట్మెంట్ చూశాను, ఆయన తిట్టిన ఎన్ని దూషించారో వారిని కూడా పెద్ద మనసుతోటి క్షమించారు ఆయన. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారికి మీ పాదాలకు నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. నిజంగా మీ ఉన్నతి, మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
2: Abuses directed at the Prime Minister are unacceptable, regardless of the circumstances. But with Prime Minister Modi publicly forgiving the youngsters and indicating that they should be guided rather than punished, shows compassion for the youth in India. Bureau Report, India Today. And while independent MP Pappu Yadav's satirical skit outside the parliament has triggered a major row, Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest to pocket the cash, saying, "Theft is in our blood." Then came LOP Rahul Gandhi, who made a symbolic donation. Pappu Yadav is now in damage control mode and has released a shivling worship video amid backlash over his skit, claiming he respects Sanatan Dharam. MP has said that his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints. But trouble is mounting for the opposition leaders. Varanasi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad. BJP-led delegation by MP Basuri Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protest protests on the parliament premises hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharam. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play protests outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharam and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram.
6: A day after Member of Parliament Pappu Yadav was seen in saffron clothes targeting the BJP government, playing a skit over the alleged embezzlement of funds in Ram Mandir issue, the Vishwa Hindu Parishad has now hit the streets against Pappu Yadav. They are saying that he has hurt the sentiments of crores of Hindus living across the world. Currently, I am here at Delhi Jantar Mantar, where they have organized a Sadbuddhi Havan, and they are kind of symbolically protesting against the opposition leaders and Pappu Yadav, those who have participated and played a skit yesterday in the parliament, where they have targeted the BJP government over the alleged Ram Mandir fund scam. And clearly here in the visuals, I'll show you that hundreds of saints from the various corners of the national capital have gathered here in the Delhi's Jantar Mantar, and they're protesting against the Pappu Yadav and other.
7: Sab Sanatan aur Mandir ke sare paise ko lutere ko ujagar karna aur uske khilaf ladna galat hai. Mandir ki raksha karna galat hai. Mandir ke paise ki raksha karna galat hai. Desh ke 100 crore का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है. हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है.
8: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है. और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी.
2: Terror strikes in Jammu and Kashmir once again, where two migrant labourers from Chhattisgarh were killed in a targeted terror attack in Kulgam, with Lashkar-e-Taiba offshoot claiming responsibility for the attack. As security forces launched massive search operations and high alert has been sounded in Kulgam to the LOC district of Rajouri, the attack has reignited the political battle over Jammu and Kashmir's future. Even as the demand for Jammu and Kashmir's statehood gathers political momentum, Chief Minister Omar Abdullah has made it clear that the fight is far from over. Omar Abdullah stated that a protest at Jantar Mantar alone will not restore statehood, asserting that the agitation must continue until the centre delivers on what he says was a promise already made. BJP, meanwhile, has condemned the attack, calling it Pakistan-backed terrorism and vowing that those behind the bloodshed will not be spared. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai has announced 20 lakh rupees ex gratia for the families of the victims, termed the Kulgam attack an assault on humanity and national unity, and vowed strict punishment for the terrorists while assuring dignified last rites for the deceased.
9: Mor bhai Deepak Ratre, जो जम्मू कश्मीर हमला हुई से ओला रात 8 बजे के उठा करके पूछी नहीं कि तय कहाँ के रहने वाला और तेर तोड़ धर्म का आए तो हिंदू कहीं तमारी नहीं. और इस पार्ट डे मोर भाई दीपक रात्रि खत्म हो गए है.
10: हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था. लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे. हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके. सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो.
11: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले. इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है. मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं.
12: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है. लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं. ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहां मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं, यहां कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है. तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको میرے پاس الفاظ نہیں اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے, اور جو سیکورٹی ہے, جو یہاں اتنا سیکورٹی کی وجہ سے لوگوں کو اتنا عذاب ہے لوگوں پہ, اس کے باوجود یہ انسیڈنٹس ہونا, مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں سیکورٹی میں کوتاہی ہے. اور دوسری میری یہ گزارش ہے کہ ایک تو یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ان لوگوں کو معاوضہ دینا چاہیے, وہاں کی تو دے گی دے گی. دوسرا اس کا باضابطہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, یاترا کی وجہ سے اتنی سیکورٹی ہونے کے باوجود ایسے انسیڈنٹس کیوں ہو رہے ہیں.
13: ایک بار پھر کائر پاکستانی آتنکوادیوں نے یہ خونی کھیل کشمیر کے اندر کھیلا ہے. کچھ دن پہلے اننت ناگ میں جموں کشمیر پولیس کے جوان کو نشانہ بنایا گیا, اور اس کے بعد آج نہتھے نردوش مزدوروں کو نشانہ بنایا ان کائر اور بزدل پاکستانی آتنکوادیوں نے. اس جگھنیہ اپرادھ کی, اس مہا پاپ کی ان آتنکوادیوں کو اور ان کے سمرتھکوں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی.
2: Prime Minister Modi has inaugurated the 5,000 crore rupees worth Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Andhra Pradesh. Built in the first phase to handle 6 million passengers annually, the airport has been planned for future expansion to a capacity of 40 million passengers per year. Named after freedom fighter Alluri Sitaram Raju, the airport is being described as the gateway of the East. Take a look at this news report.

0: are watching India Today.
1: Prime Minister Modi has forgiven the youth who abused him during the student protests at Jantar Mantar, saying the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Prime Minister also assured them that he is working for the future and said everyone must work together for the country. Meanwhile, following the outrage, the teenager issued an apology for abusing Prime Minister Modi and promised never to repeat such remarks. We're getting you this report.
2: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
3: Forgiveness, not punishment. In an unprecedented gesture, Prime Minister Modi forgave the youth who hurled abuses at him during the student protests and gave them a chance to reform. In a recorded message released on Friday night, Prime Minister Narendra Modi said he was culturally shocked by the language used against him and his mother.
2: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
3: Minister Modi forgave the abusers and urged society to guide the children instead and wish them the best.
2: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
4: मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था।
3: The teenager whose video abusing Prime Minister Modi went viral issued an apology following massive outrage and the registration of an FIR against her.
4: वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
3: New details have also emerged about the girl's background. Speaking exclusively to India Today, the owner of the salon where she had enrolled to learn nail art said that she had used a fake name during training and had refused to submit her Aadhaar card during the admission process.
5: वो काम करने नहीं आई थी, काम सीखने के लिए आई थी और करीब 25-26 मई में आई थी और वो करीब हमारे वहाँ लास्ट रही 9 जून तक। उसे 2-3 दिन काम करने के बाद हम उनसे ये बोले भाई अपना आधार कार्ड ले आओ, तो 2-3 दिन तो कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, अभी आज दुकान बंद है, ऐसे बहाना करती रही। यहाँ पे जो नाम बताई थी वो मैंसिल नाम बताई थी। तो 9 जून को हमने कहा ठीक है, अगर आप जो है आधार कार्ड लेके आ सकती हो तो कल से आना, नहीं हमारे वहाँ काम सीखने के लिए मत आना।
3: Meanwhile, CJP founder Abhijit Deepke criticized the BJP over the case filed against the teenager.
6: अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं पर कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है। अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है।
3: The politics erupted, targeting the Prime Minister, saying that it should be him who should apologize to the youth. LOP Rahul Gandhi has set out at Prime Minister Narendra Modi, saying India's students do not need his forgiveness, but are instead owed his apology. The NDA, on the other hand, hailed Prime Minister Modi. Pawan Kalyan called Prime Minister Modi the greatest leader of all time.
7: Roju poddunna Pradhan Mantri gari statement chusanu. Ayana tittina ఎన్ని దూషించారో వారిని కూడా పెద్ద మనసుతోటి క్షమించారు ఆయన. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారికి మీ పాదాలకు నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. నిజంగా మీ ఉన్నతి, మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
3: Abuses directed at the Prime Minister are unacceptable, regardless of the circumstances. But with Prime Minister Modi publicly forgiving the youngsters and indicating that they should be guided rather than punished, shows compassion for the youth in India. Bureau Report, India Today.
1: And well, independent MP Pappu Yadav's satirical skit outside the parliament has triggered a major row. Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest to pocket the cash, saying, "Theft is in our blood." Then came LOP Rahul Gandhi, who made a symbolic donation. Pappu Yadav is now in damage control mode and has released a shivling worship video amid backlash over his skit, claiming he respects Sanatan Dharam. MP has said that his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints. But trouble is mounting for the opposition leaders. Varanasi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad. BJP-led delegation by MP Basudi Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protests on the parliament premises hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharam. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play protests outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharam and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram.
8: A day after Member of Parliament Pappu Yadav was seen in saffron clothes targeting the BJP government, playing a skit over the alleged embezzlement of funds in Ram Mandir issue, the Vishwa Hindu Parishad has now hit the streets against Pappu Yadav. They are saying that he has hurt the sentiments of crores of Hindus living across the world. Currently, I am here at Delhi Jantar Mantar, where they have organized a Sadbuddhi Havan, and they are kind of symbolically protesting against the opposition leaders and Pappu Yadav, those who have participated and played a skit yesterday in the parliament, where they have targeted the BJP government over the alleged Ram Mandir fund scam. And clearly here in the visuals, I'll show you that hundreds of saints from the various corners of the national capital have gathered here in the Delhi's Jantar Mantar, and they're protesting against the Pappu Yadav and other.
9: Sab Sanatan aur Mandir ke sare paise ko lutere ko ujagar karna aur uske khilaf ladna galat hai. Mandir ki raksha karna galat hai. Mandir ke paise ki raksha karna galat hai. Desh ke 100 crore का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है. हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है.
10: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है. और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं. और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी.
1: Yes, terror strikes in Jammu and Kashmir once again, where two migrant laborers from Chhattisgarh were killed in a targeted terror attack in Kulgam, with Lashkar-e-Taiba offshoot claiming responsibility for the attack. As security forces launched massive search operations, and high alert has been sounded in Kulgam to the LOC district of Rajouri, the attack has reignited the political battle over Jammu and Kashmir's future. Even as the demand for Jammu and Kashmir's statehood gathers political momentum, Chief Minister Omar Abdullah has made it clear that the fight is far from over. Omar Abdullah stated that a protest at Jantar Mantar alone will not restore statehood, asserting that the agitation must continue until the centre delivers on what he says was a promise already made. BJP, meanwhile, has condemned the attack, calling it Pakistan-backed terrorism and vowing that those behind the bloodshed will not be spared. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai has announced 20 lakh rupees ex gratia for the families of the victims, termed the Kulgam attack an assault on humanity and national unity, and vowed strict punishment for the terrorists while assuring dignified last rites for the deceased.
11: Mor bhai Deepak Ratre, jo Jammu Kashmir hamla hoi se, ola raat 8 baje ke utha karke puchin hai ki tai kahan ke rehne walas aur tar tor dharm ka aaye तो हिंदू कही तमारीन है और इस पार्ट डे मोर भाई दीपक रात्रे खत्म हो गए है।
12: हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके। सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो।
13: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
14: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहां की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
15: एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान

0: are watching India Today.
1: Prime Minister Modi has forgiven the youth who abused him during the student protests at Jantar Mantar, saying the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Prime Minister also assured them that he is working for the future and said everyone must work together for the country. Meanwhile, following the outrage, the teenager issued an apology for abusing Prime Minister Modi and promised never to repeat such remarks. We're getting you this report.
2: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
3: Forgiveness, not punishment. In an unprecedented gesture, Prime Minister Modi forgave the youth who hurled abuses at him during the student protests and gave them a chance to reform. In a recorded message released on Friday night, Prime Minister Narendra Modi said he was culturally shocked by the language used against him and his mother.
2: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
3: Minister Modi forgave the abusers and urged society to guide the children instead and wish them the best.
2: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
4: मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था।
3: The teenager whose video abusing Prime Minister Modi went viral issued an apology following massive outrage and the registration of an FIR against her.
4: वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
3: New details have also emerged about the girl's background. Speaking exclusively to India Today, the owner of the salon where she had enrolled to learn nail art said that she had used a fake name during training and had refused to submit her Aadhaar card during the admission process.
5: वो काम करने नहीं आई थी, काम सीखने के लिए आई थी और करीब 25-26 मई में आई थी और वो करीब हमारे वहाँ लास्ट रही 9 जून तक। इसे 2-3 दिन काम करने के बाद हम उनसे ये बोले वे अपना आधार कार्ड ले आओ, तो 2-3 दिन तो कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, अभी आज दुकान बंद है, ऐसे बहाना करती रही। यहाँ पे जो नाम बताई थी वो मैंसिल नाम बताई थी, तो 9 जून को हमने कहा ठीक है, अगर आप जो है आधार कार्ड लेके आ सकती हो तो कल से आना, नहीं हमारे वहाँ काम सीखने के लिए मत आना।
3: Meanwhile, CJP founder Abhijit Deepke criticized the BJP over the case filed against the teenager.
6: अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है। अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है।
3: The politics erupted, targeting the Prime Minister, saying that it should be him who should apologize to the youth. LOP Rahul Gandhi has set out at Prime Minister Narendra Modi, saying India's students do not need his forgiveness, but are instead owed his apology. The NDA, on the other hand, hailed Prime Minister Modi. Pawan Kalyan called Prime Minister Modi the greatest leader of all time.
7: Roju poddunna Pradhan Mantri gari statement chusanu. Ayana tittina ఎన్ని దూషించారో వారిని కూడా పెద్ద మనసుతోటి క్షమించారు ఆయన. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారికి మీ పాదాలకు నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. నిజంగా మీ ఉన్నతి, మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
3: Abuses directed at the Prime Minister are unacceptable, regardless of the circumstances. But with Prime Minister Modi publicly forgiving the youngsters and indicating that they should be guided rather than punished, shows compassion for the youth in India. Bureau Report, India Today.
1: And well, independent MP Pappu Yadav's satirical skit outside the parliament has triggered a major row. Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest to pocket the cash, saying, "Theft is in our blood." Then came LOP Rahul Gandhi, who made a symbolic donation. Pappu Yadav is now in damage control mode and has released a shivling worship video amid backlash over his skit. Claiming he respects Sanatan Dharam, MP has said that his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints. But trouble is mounting for the opposition leaders. Varanasi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad. BJP-led delegation by MP Basudi Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protest on the parliament premises hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharam. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play protests outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharam and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram.
8: A day after Member of Parliament Pappu Yadav was seen in saffron clothes targeting the BJP government, playing a skit over the alleged embezzlement of funds in Ram Mandir issue, the Vishwa Hindu Parishad has now hit the streets against Pappu Yadav. They are saying that he has hurt the sentiments of crores of Hindus living across the world. Currently, I am here at Delhi Jantar Mantar, where they have organized a Sadbuddhi Havan, and they are kind of symbolically protesting against the opposition leaders and Pappu Yadav, those who have participated and played a skit yesterday in the parliament, where they have targeted the BJP government over the alleged Ram Mandir fund scam. And clearly here in the visuals, I'll show you that hundreds of saints from the various corners of the national capital have gathered here in the Delhi's Jantar Mantar, and they're protesting against the Pappu Yadav and other.
9: Sab Sanatan aur Mandir ke sare paise ko lutere ko ujagar karna aur uske khilaf ladna galat hai. Mandir ki raksha karna galat hai. Mandir ke paise ki raksha karna galat hai. Desh ke 100 crore का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है. हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है.
10: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है. और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं. और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी.
1: Yes, terror strikes in Jammu and Kashmir once again, where two migrant laborers from Chhattisgarh were killed in a targeted terror attack in Kulgam, with Lashkar-e-Taiba offshoot claiming responsibility for the attack. As security forces launched massive search operations and high alert has been sounded in Kulgam to the LOC district of Rajouri, the attack has reignited the political battle over Jammu and Kashmir's future. Even as the demand for Jammu and Kashmir's statehood gathers political momentum, Chief Minister Omar Abdullah has made it clear that the fight is far from over. Omar Abdullah stated that a protest at Jantar Mantar alone will not restore statehood, asserting that the agitation must continue until the centre delivers on what he says was a promise already made. BJP, meanwhile, has condemned the attack, calling it Pakistan-backed terrorism and vowing that those behind the bloodshed will not be spared. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai has announced 20 lakh rupees ex gratia for the families of the victims, termed the Kulgam attack an assault on humanity and national unity, and vowed strict punishment for the terrorists while assuring dignified last rites for the deceased.
11: Mor bhai Deepak Ratre, jo Jammu Kashmir hamla hoi se, ola raat 8 baje ke utha karke puchin hai ki tain kahan ke rehne walas aur tar tor dharm kaaye. तो हिंदू कही तमारीन है और इस पार्ट डे मोर भाई दीपक रात्रि खत्म हो गए है।
12: हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके। सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो।
13: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट छूट मांग रहे हैं।
14: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
15: एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया, और उसके बाद आज निहत्थे निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया इन कायर और बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की, इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
1: Prime Minister Modi has inaugurated the 5,000 crore rupees worth Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Andhra Pradesh. Built in the first phase to handle 6 million passengers annually, the airport has been planned for future expansion to a capacity of 40 million passengers per year. Named after freedom fighter Alluri Sitaram Raju, the airport is being described as the gateway of the East. Take a look at this news report.

0: are watching India Today.
1: Prime Minister Modi has forgiven the youth who abused him during the student protests at Jantar Mantar, saying the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Prime Minister also assured them that he is working for the future and said everyone must work together for the country. Meanwhile, following the outrage, the teenager issued an apology for abusing Prime Minister Modi and promised never to repeat such remarks. We're getting you this report.
2: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का, सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
3: Forgiveness, not punishment. In an unprecedented gesture, Prime Minister Modi forgave the youth who hurled abuses at him during the student protests and gave them a chance to reform. In a recorded message released on Friday night, Prime Minister Narendra Modi said he was culturally shocked by the language used against him and his mother.
2: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
3: Minister Modi forgave the abusers and urged society to guide the children instead and wish them the best.
2: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भलीभांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
4: मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था।
3: The teenager whose video abusing Prime Minister Modi went viral issued an apology following massive outrage and the registration of an FIR against her.
4: वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
3: New details have also emerged about the girl's background. Speaking exclusively to India Today, the owner of the salon where she had enrolled to learn nail art said that she had used a fake name during training and had refused to submit her Aadhaar card during the admission process.
5: वो काम करने नहीं आई थी, काम सीखने के लिए आई थी और करीब 25-26 मई में आई थी और वो करीब हमारे वहाँ लास्ट रही 9 जून तक। उसे 2-3 दिन काम करने के बाद हम उनसे ये बोले वे अपना आधार कार्ड ले आओ, तो 2-3 दिन तो कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, अभी आज दुकान बंद है, ऐसे बहाना करती रही। यहाँ पे जो नाम बताई थी वो मैंसिल नाम बताई थी, तो 9 जून को हमने कहा ठीक है, अगर आप जो है आधार कार्ड लेके आ सकती हो तो कल से आना, नहीं हमारे वहाँ काम सीखने के लिए मत आना।
3: Meanwhile, CJP founder Abhijit Deepke criticized the BJP over the case filed against the teenager.
6: अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं पर कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है। अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है।
3: The politics erupted, targeting the Prime Minister, saying that it should be him who should apologize to the youth. LOP Rahul Gandhi has set out at Prime Minister Narendra Modi, saying India's students do not need his forgiveness, but are instead owed his apology. The NDA, on the other hand, hailed Prime Minister Modi. Pawan Kalyan called Prime Minister Modi the greatest leader of all time.
7: Roju poddunna Pradhan Mantri gari statement chusan. Ayana tittina ఎన్ని దూషించారో వారిని కూడా పెద్ద మనసుతోటి క్షమించారు ఆయన. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారికి మీ పాదాలకు నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. నిజంగా మీ ఉన్నతి, మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
3: Abuses directed at the Prime Minister are unacceptable, regardless of the circumstances. But with Prime Minister Modi publicly forgiving the youngsters and indicating that they should be guided rather than punished, shows compassion for the youth in India. Bureau Report, India Today.
1: And well, independent MP Pappu Yadav's satirical skit outside the parliament has triggered a major row. Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest to pocket the cash, saying, "Theft is in our blood." Then came LOP Rahul Gandhi, who made a symbolic donation. Pappu Yadav is now in damage control mode and has released a shivling worship video amid backlash over his skit, claiming he respects Sanatan Dharam. MP has said that his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints. But trouble is mounting for the opposition leaders. Varanasi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad. BJP-led delegation by MP Basudi Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protest on the parliament premises hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharam. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play protests outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharam and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram.
8: A day after Member of Parliament Pappu Yadav was seen in saffron clothes targeting the BJP government, playing a skit over the alleged embezzlement of funds in Ram Mandir issue, the Vishwa Hindu Parishad has now hit the streets against Pappu Yadav. They are saying that he has hurt the sentiments of crores of Hindus living across the world. Currently, I am here at Delhi Jantar Mantar, where they have organized a Sadbuddhi Havan, and they are kind of symbolically protesting against the opposition leaders and Pappu Yadav, those who have participated and played a skit yesterday in the parliament, where they have targeted the BJP government over the alleged Ram Mandir fund scam. And clearly here in the visuals, I'll show you that hundreds of saints from the various corners of the national capital have gathered here in the Delhi's Jantar Mantar, and they're protesting against the Pappu Yadav and other.
9: Sab Sanatan aur Mandir ke sare paise ko lutere ko ujagar karna aur uske khilaf ladna galat hai. Mandir ki raksha karna galat hai. Mandir ke paise ki raksha karna galat hai. देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है. हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है.
10: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है. और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं. और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी.
1: Yes, terror strikes in Jammu and Kashmir once again, where two migrant laborers from Chhattisgarh were killed in a targeted terror attack in Kulgam, with Lashkar-e-Taiba offshoot claiming responsibility for the attack. As security forces launched massive search operations, and high alert has been sounded in Kulgam to the LOC district of Rajouri, the attack has reignited the political battle over Jammu and Kashmir's future. Even as the demand for Jammu and Kashmir's statehood gathers political momentum, Chief Minister Omar Abdullah has made it clear that the fight is far from over. Omar Abdullah stated that a protest at Jantar Mantar alone will not restore statehood, asserting that the agitation must continue until the centre delivers on what he says was a promise already made. BJP, meanwhile, has condemned the attack, calling it Pakistan-backed terrorism and vowing that those behind the bloodshed will not be spared. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai has announced 20 lakh rupees ex gratia for the families of the victims, termed the Kulgam attack an assault on humanity and national unity, and vowed strict punishment for the terrorists while assuring dignified last rites for the deceased.
11: Mor bhai Deepak Ratre, jo Jammu Kashmir hamla hoi se, ola raat 8 baje ke utha karke puchin hai ki tain kahan ke rehne walas aur tar tor dharm kaaye तो हिंदू कही तमारी नहीं और इस पार्ट डे मोर भाई दीपक रात्रे खत्म हो गए है।
12: हम भी जानते हैं ना, एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके। सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो।
13: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं।
14: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहां की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
15: एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया, और उसके बाद आज निहत्थे निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया इन कायर और बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की, इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
1: Prime Minister Modi has inaugurated the 5,000 crore rupees worth Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Andhra Pradesh. Built in the first phase to handle 6 million passengers annually, the airport has

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: You are watching India Today.
2: Prime Minister Modi has forgiven the youth who abused him during the student protests at Jantar Mantar, saying the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Prime Minister also assured them that he is working for the future and said everyone must work together for the country. Meanwhile, following the outrage, the teenager issued an apology for abusing Prime Minister Modi and promised never to repeat such remarks. We're getting you this report.
3: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
2: Forgiveness, not punishment. In an unprecedented gesture, Prime Minister Modi forgave the youth who hurled abuses at him during the student protests and gave them a chance to reform. In a recorded message released on Friday night, Prime Minister Narendra Modi said he was culturally shocked by the language used against him and his mother.
3: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
2: Prime Minister Modi forgave the abusers and urged society to guide the children instead and wish them the best.
3: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
4: मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था।
2: The teenager whose video abusing Prime Minister Modi went viral issued an apology following massive outrage and the registration of an FIR against her.
4: वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
2: New details have also emerged about the girl's background. Speaking exclusively to India Today, the owner of the salon where she had enrolled to learn nail art said that she had used a fake name during training and had refused to submit her Aadhaar card during the admission process.
5: वो काम करने नहीं आई थी, काम सीखने के लिए आई थी और करीब 25-26 मई में आई थी और वो करीब हमारे वहाँ लास्ट रही 9 जून तक। उसे 2-3 दिन काम करने के बाद हम उनसे ये बोले वे अपना आधार कार्ड ले आओ, तो 2-3 दिन तो कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, अभी आज दुकान बंद है, ऐसे बहाना करती रही। यहाँ पे जो नाम बताई थी वो मैंसिल नाम बताई थी, तो 9 जून को हमने कहा ठीक है अगर आप जो है आधार कार्ड लेके आ सकती हो तो कल से आना, नहीं हमारे वहाँ काम सीखने के लिए मत आना।
2: Meanwhile, CJP founder Abhijit Deepke criticized the BJP over the case filed against the teenager.
6: अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। गाली देना इज नॉट अ क्राइम, अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है।
2: The politics erupted, targeting the Prime Minister, saying that it should be him who should apologize to the youth. LOP Rahul Gandhi has set out at Prime Minister Narendra Modi, saying India's students do not need his forgiveness, but are instead owed his apology. The NDA, on the other hand, hailed Prime Minister Modi. Pawan Kalyan called Prime Minister Modi the greatest leader of all time.
7: రోజు పొద్దున్న ప్రధానమంత్రి గారి స్టేట్మెంట్ చూశాను, ఆయన తిట్టిన ఎన్ని దూషించారో వారిని కూడా పెద్ద మనసుతోటి క్షమించారు ఆయన. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారికి మీ పాదాలకు నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. నిజంగా మీ ఉన్నతి, మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
2: Abuses directed at the Prime Minister are unacceptable, regardless of the circumstances. But with Prime Minister Modi publicly forgiving the youngsters and indicating that they should be guided rather than punished, shows compassion for the youth in India. Bureau Report, India Today. And well, independent MP Pappu Yadav's satirical skit outside the parliament has triggered a major row. Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest to pocket the cash, saying, "Theft is in our blood." Then came LOP Rahul Gandhi, who made a symbolic donation. Pappu Yadav is now in damage control mode and has released a shivling worship video amid backlash over his skit. Claiming he respects Sanatan Dharam, MP has said that his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints. But trouble is mounting for the opposition leaders. Varanasi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad. BJP-led delegation by MP Basudi Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protest on the parliament premises hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharam. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play protests outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharam and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram.
8: A day after Member Parliament Pappu Yadav was seen in saffron clothes targeting the BJP government, playing a skit over the alleged embezzlement of funds in Ram Mandir issue, The Vishwa Hindu Parishad has now hit the streets against Pappu Yadav. They are saying that he has hurt the sentiments of crores of Hindus living across the world. Currently, I am here at Delhi Jantar Mantar, where they have organized a Sadbuddhi Havan, and they are kind of symbolically protesting against the opposition leaders and Pappu Yadav, those who have participated and played a skit yesterday in the parliament, where they have targeted the BJP government over the alleged Ram Mandir fund scam. And clearly here in the visuals, I'll show you that hundreds of saints from the various corners of the national capital have gathered here in the Delhi's Jantar Mantar, and they're protesting against the Pappu Yadav and other.
9: Sab Sanatan aur Mandir ke sare paise ko lutere ko ujagar karna aur uske khilaf ladna galat hai. मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
10: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं, और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी।
2: Terror strikes in Jammu and Kashmir once again, where two migrant laborers from Chhattisgarh were killed in a targeted terror attack in Kulgam, with Lashkar-e-Taiba offshoot claiming responsibility for the attack. As security forces launched massive search operations and high alert has been sounded in Kulgam to the LOC district of Rajouri, the attack has reignited the political battle over Jammu and Kashmir's future. Even as the demand for Jammu and Kashmir's statehood gathers political momentum, Chief Minister Omar Abdullah has made it clear that the fight is far from over. Omar Abdullah stated that a protest at Jantar Mantar alone will not restore statehood, asserting that the agitation must continue until the centre delivers on what he says was a promise already made. BJP, meanwhile, has condemned the attack, calling it Pakistan-backed terrorism and vowing that those behind the bloodshed will not be spared. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai has announced 20 lakh rupees ex gratia for the families of the victims, termed the Kulgam attack an assault on humanity and national unity, and vowed strict punishment for the terrorists while assuring dignified last rites for the deceased.
11: Mor bhai Deepak Ratre, jo Jammu Kashmir hamla hoi se, ola raat 8 baje ke utha karke puchin hai ki tain kahan ke rehne walas aur tar tor dharm kaaye, तो हिंदू कही तमारी नहीं, और इस पार्ट डे मोर भाई दीपक रात्रे खत्म हो गए है।
12: हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे, हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके, सिलसिला चलता रहेगा जब तक। और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो।
13: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है, मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे हैं।
14: नहीं, क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
15: एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया और उसके बाद आज निहत्थे निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया इन कायर और बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की, इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
2: Prime Minister Modi has inaugurated the 5,000 crore rupees worth Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Andhra Pradesh. Built in the first phase to handle 6 million passengers annually, the airport has been planned for future expansion to a capacity of 40 million passengers per year. Named after freedom fighter Alluri Sitaram Raju, the airport is being described as the gateway of the East. Take a look at this news report.

0: are watching India Today.
1: Prime Minister Modi has forgiven the youth who abused him during the student protests at Jantar Mantar, saying the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Prime Minister also assured them that he is working for the future and said everyone must work together for the country. Meanwhile, following the outreach, the teenager issued an apology for abusing Prime Minister Modi and promised never to repeat such remarks. We're getting you this report.
2: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
3: Forgiveness, not punishment. In an unprecedented gesture, Prime Minister Modi forgave the youth who hurled abuses at him during the student protests and gave them a chance to reform. In a recorded message released on Friday night, Prime Minister Narendra Modi said he was culturally shocked by the language used against him and his mother.
2: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
3: Prime Minister Modi forgave the abusers and urged society to guide the children instead and wish them the best.
2: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
4: मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था।
3: The teenager whose video abusing Prime Minister Modi went viral issued an apology following massive outrage and the registration of an FIR against her.
4: वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
3: New details have also emerged about the girl's background. Speaking exclusively to India Today, the owner of the salon where she had enrolled to learn nail art said that she had used a fake name during training and had refused to submit her Aadhaar card during the admission process.
5: वो काम करने नहीं आई थी, काम सीखने के लिए आई थी और करीब 25-26 मई में आई थी और वो करीब हमारे वहाँ लास्ट रही 9 जून तक। उसे 2-3 दिन काम करने के बाद हम उनसे ये बोले भाई अपना आधार कार्ड ले आओ, तो 2-3 दिन तो कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, अभी आज दुकान बंद है, ऐसे बहाना करती रही। यहाँ पे जो नाम बताई थी वो मैंसिल नाम बताई थी। तो 9 जून को हमने कहा ठीक है, अगर आप जो है आधार कार्ड लेके आ सकती हो तो कल से आना, नहीं हमारे वहाँ काम सीखने के लिए मत आना।
3: Meanwhile, CJP founder Abhijit Deepke criticized the BJP over the case filed against the teenager.
6: अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की. गाली देना इज नॉट अ क्राइम. अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है. अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है.
3: The politics erupted, targeting the Prime Minister, saying that it should be him who should apologize to the youth. LOP Rahul Gandhi has set out at Prime Minister Narendra Modi, saying India's students do not need his forgiveness, but are instead owed his apology. The NDA, on the other hand, hailed Prime Minister Modi. Pawan Kalyan called Prime Minister Modi the greatest leader of all time.
7: Roju poddunna Pradhan Mantri gari statement chusam. Ayana tittina ఎన్ని దూషించారో వారిని కూడా పెద్ద మనసుతో క్షమించారు ఆయన. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారికి మీ పాదాలకు నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. నిజంగా మీ ఉన్నతి, మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
3: Abuses directed at the Prime Minister are unacceptable, regardless of the circumstances. But with Prime Minister Modi publicly forgiving the youngsters and indicating that they should be guided rather than punished, shows compassion for the youth in India. Bureau Report, India Today.
1: And well, independent MP Pappu Yadav's satirical skit outside the parliament has triggered a major row. Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest to pocket the cash, saying, "Theft is in our blood." Then came LOP Rahul Gandhi, who made a symbolic donation. Pappu Yadav is now in damage control mode and has released a shivling worship video amid backlash over his skit, claiming he respects Sanatan Dharam. MP has said that his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints. But trouble is mounting for the opposition leaders. Varanasi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad. BJP-led delegation by MP Basudi Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protests on the parliament premises hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharam. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play protests outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharam and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram.
8: A day after Member of Parliament Pappu Yadav was seen in saffron clothes targeting the BJP government, playing a skit over the alleged embezzlement of funds in Ram Mandir issue, the Vishwa Hindu Parishad has now hit the streets against Pappu Yadav. They are saying that he has hurt the sentiments of crores of Hindus living across the world. Currently, I am here at Delhi Jantar Mantar, where they have organized a Sadbuddhi Havan, and they are kind of symbolically protesting against the opposition leaders and Pappu Yadav, those who have participated and played a skit yesterday in the parliament, where they have targeted the BJP government over the alleged Ram Mandir fund scam. And clearly here in the visuals, I'll show you that hundreds of saints from the various corners of the national capital have gathered here in the Delhi's Jantar Mantar, and they're protesting against the Pappu Yadav and other.
9: Sab Sanatan aur Mandir ke sare paise ko lutere ko ujagar karna aur uske khilaf ladna galat hai. Mandir ki raksha karna galat hai. Mandir ke paise ki raksha karna galat hai. Desh ke 100 crore का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है. हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है.
10: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है. और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं. और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी.
1: Yes, terror strikes in Jammu and Kashmir once again, where two migrant laborers from Chhattisgarh were killed in a targeted terror attack in Kulgam, with Lashkar-e-Taiba offshoot claiming responsibility for the attack, as security forces launched massive search operations and high alert has been sounded in Kulgam to the LOC district of Rajouri. The attack has reignited the political battle over Jammu and Kashmir's future, even as the demand for Jammu and Kashmir's statehood gathers political momentum. Chief Minister Omar Abdullah has made it clear that the fight is far from over. Omar Abdullah stated that a protest at Jantar Mantar alone will not restore statehood, asserting that the agitation must continue until the centre delivers on what he says was a promise already made. BJP, meanwhile, has condemned the attack, calling it Pakistan-backed terrorism and vowing that those behind the bloodshed will not be spared. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai has announced 20 lakh rupees ex gratia for the families of the victims, termed the Kulgam attack an assault on humanity and national unity, and vowed strict punishment for the terrorists while assuring dignified last rites for the deceased.
11: Mor bhai Deepak Ratre, jo Jammu Kashmir hamla hoi se, ola raat 8 baje ke utha karke puchin hai ki tain kahan ke rehne walas aur tar tod dharma kaaye to hindu kahi tamarin hai aur is part day mor bhai Deepak Ratre khatam ho gaye hai.
12: हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था. लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे. हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके. सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो.
13: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले. इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है. मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते
14: हैं. क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है. लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं. ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है. तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए. मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है. और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहां की तो देगी. दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
15: एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है. कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया, और उसके बाद आज निहत्थे निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया इन कायर और बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने. इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की, इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.
1: Prime Minister Modi has inaugurated the 5,000 crore rupees worth Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Andhra Pradesh. Built in the first phase to handle 6 million passengers annually, the airport has been planned for future expansion to a capacity of 40 million passengers per year. Named after freedom fighter Alluri Sitaram Raju, the airport is being described as the gateway of the East. Take a look at this news report.

0: are watching India Today.
1: Prime Minister Modi has forgiven the youth who abused him during the student protests at Jantar Mantar, saying the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Prime Minister also assured them that he is working for the future and said everyone must work together for the country. Meanwhile, following the outrage, the teenager issued an apology for abusing Prime Minister Modi and promised never to repeat such remarks. We're getting you this report.
2: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
3: Forgiveness, not punishment. In an unprecedented gesture, Prime Minister Modi forgave the youth who hurled abuses at him during the student protests and gave them a chance to reform. In a recorded message released on Friday night, Prime Minister Narendra Modi said he was culturally shocked by the language used against him and his mother.
2: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
3: Prime Minister Modi forgave the abusers and urged society to guide the children instead and wish them the best.
2: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
4: मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था।
3: The teenager whose video abusing Prime Minister Modi went viral issued an apology following massive outrage and the registration of an FIR against her.
4: वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
3: New details have also emerged about the girl's background. Speaking exclusively to India Today, the owner of the salon where she had enrolled to learn nail art said that she had used a fake name during training and had refused to submit her Aadhaar card during the admission process.
5: वो काम करने नहीं आई थी, काम सीखने के लिए आई थी और करीब 25-26 मई में आई थी और वो करीब हमारे वहाँ लास्ट रही 9 जून तक। इसे 2-3 दिन काम करने के बाद हम उनसे ये बोले वे अपना आधार कार्ड ले आओ, तो 2-3 दिन तो कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, अभी आज दुकान बंद है, ऐसे बहाना करती रही। यहाँ पे जो नाम बताई थी वो मैंसिल नाम बताई थी, तो 9 जून को हमने कहा ठीक है अगर आप जो है आधार कार्ड लेके आ सकती हो तो कल से आना, नहीं हमारे वहाँ काम सीखने के लिए मत आना।
3: Meanwhile, CJP founder Abhijit Deepke criticized the BJP over the case filed against the teenager.
6: अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है। अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है।
3: The politics erupted, targeting the Prime Minister, saying that it should be him who should apologize to the youth. LOP Rahul Gandhi has set out at Prime Minister Narendra Modi, saying India's students do not need his forgiveness, but are instead owed his apology. The NDA, on the other hand, hailed Prime Minister Modi. Pawan Kalyan called Prime Minister Modi the greatest leader of all time.
7: Roju poddunne Pradhan Mantri gari statement chusam. Ayana tittina ఎన్ని దూషించారో వారిని కూడా పెద్ద మనసుతోటి క్షమించారు. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారికి మీ పాదాలకు నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. నిజంగా మీ ఉన్నతి, మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
3: Abuses directed at the Prime Minister are unacceptable, regardless of the circumstances. But with Prime Minister Modi publicly forgiving the youngsters and indicating that they should be guided rather than punished, shows compassion for the youth in India. Bureau Report, India Today.
1: And well, independent MP Pappu Yadav's satirical skit outside the parliament has triggered a major row. Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest to pocket the cash, saying, "Theft is in our blood." Then came LOP Rahul Gandhi, who made a symbolic donation. Pappu Yadav is now in damage control mode and has released a shivling worship video amid backlash over his skit, claiming he respects Sanatan Dharam. MP has said that his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints. But trouble is mounting for the opposition leaders. Varanasi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad. BJP-led delegation by MP Basudi Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protests on the parliament premises hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharam. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play protests outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharam and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram.
8: A day after Member Parliament Pappu Yadav was seen in saffron clothes targeting the BJP government, playing a skit over the alleged embezzlement of funds in Ram Mandir issue, the Vishwa Hindu Parishad has now hit the streets against Pappu Yadav. They are saying that he has hurt the sentiments of crores of Hindus living across the world. Currently, I am here at Delhi Jantar Mantar, where they have organized a Sadbuddhi Havan, and they are kind of symbolically protesting against the opposition leaders and Pappu Yadav, those who have participated and played a skit yesterday in the parliament, where they have targeted the BJP government over the alleged Ram Mandir fund scam. And clearly here in the visuals, I'll show you that hundreds of saints from the various corners of the national capital have gathered here in the Delhi's Jantar Mantar, and they're protesting against the Pappu Yadav and other.
9: Sab Sanatan aur Mandir ke sare paise ko lutere ko ujagar karna aur uske khilaf ladna galat hai. Mandir ki raksha karna galat hai. Mandir ke paise ki raksha karna galat hai. Desh ke 100 crore का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है. हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है.
10: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है. और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं. और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी.
1: Yes, terror strikes in Jammu and Kashmir once again, where two migrant laborers from Chhattisgarh were killed in a targeted terror attack in Kulgam, with Lashkar-e-Taiba offshoot claiming responsibility for the attack. As security forces launched massive search operations and high alert has been sounded in Kulgam to the LOC district of Rajouri, the attack has reignited the political battle over Jammu and Kashmir's future. Even as the demand for Jammu and Kashmir's statehood gathers political momentum, Chief Minister Omar Abdullah has made it clear that the fight is far from over. Omar Abdullah stated that a protest at Jantar Mantar alone will not restore statehood, asserting that the agitation must continue until the centre delivers on what he says was a promise already made. BJP, meanwhile, has condemned the attack, calling it Pakistan-backed terrorism and vowing that those behind the bloodshed will not be spared. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai has announced 20 lakh rupees ex gratia for the families of the victims, termed the Kulgam attack an assault on humanity and national unity, and vowed strict punishment for the terrorists while assuring dignified last rites for the deceased.
11: Mor bhai Deepak Ratre, jo Jammu Kashmir hamla hoi se, ola raat 8 baje ke utha karke puchin hai ki tain kahan ke rehne walas aur tar tor dharm ka aaye. तो हिंदू कही तमारीन है और इस पार्ट डे मोर भाई दीपक रात्रे खत्म हो गए है।
12: हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके। सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो।
13: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
14: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहां की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
15: एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया, और उसके बाद आज निहत्थे निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया इन कायर और बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की, इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
1: Prime Minister Modi has inaugurated the 5,000 crore rupees worth Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Andhra Pradesh. Built in the first phase to handle 6 million passengers annually, the airport has been planned for future expansion to a capacity of 40 million passengers per year. Named after freedom fighter Alluri Sitaram Raju, the airport is being described as the gateway of the East. Take a look at this news report.

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: You are watching India Today.
2: Prime Minister Modi has forgiven the youth who abused him during the student protests at Jantar Mantar, saying the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Prime Minister also assured them that he is working for the future and said everyone must work together for the country. Meanwhile, following the outrage, the teenager issued an apology for abusing Prime Minister Modi and promised never to repeat such remarks. We're getting you this report.
3: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
2: Forgiveness, not punishment. In an unprecedented gesture, Prime Minister Modi forgave the youth who hurled abuses at him during the student protests and gave them a chance to reform. In a recorded message released on Friday night, Prime Minister Narendra Modi said he was culturally shocked by the language used against him and his mother.
3: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
2: Prime Minister Modi forgave the abusers and urged society to guide the children instead and wish them the best.
3: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित, गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
4: मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था।
2: The teenager whose video abusing Prime Minister Modi went viral issued an apology following massive outrage and the registration of an FIR against her.
4: वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
2: New details have also emerged about the girl's background. Speaking exclusively to India Today, the owner of the salon where she had enrolled to learn nail art said that she had used a fake name during training and had refused to submit her Aadhaar card during the admission process.
5: वो काम करने नहीं आई थी, काम सीखने के लिए आई थी और करीब 25-26 मई में आई थी और वो करीब हमारे वहाँ लास्ट रही 9 जून तक। उसे 2-3 दिन काम करने के बाद हम उनसे ये बोले वे अपना आधार कार्ड ले आओ, तो 2-3 दिन तो कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, अभी आज दुकान बंद है, ऐसे बहाना करती रही। यहाँ पे जो नाम बताई थी वो मैंसिल नाम बताई थी। तो 9 जून को हमने कहा ठीक है, अगर आप जो है आधार कार्ड लेके आ सकती हो तो कल से आना, नहीं हमारे वहाँ काम सीखने के लिए मत आना।
2: Meanwhile, CJP founder Abhijit Deepke criticized the BJP over the case filed against the teenager.
6: अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन BJP के IT सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है। अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है।
2: The politics erupted, targeting the Prime Minister, saying that it should be him who should apologize to the youth. LOP Rahul Gandhi has set out at Prime Minister Narendra Modi, saying India's students do not need his forgiveness, but are instead owed his apology. The NDA, on the other hand, hailed Prime Minister Modi. Pawan Kalyan called Prime Minister Modi the greatest leader of all time.
7: రోజు పొద్దున్న ప్రధానమంత్రి గారి స్టేట్మెంట్ చూశాను, ఆయన తిట్టిన ఎన్ని దూషించారో వారిని కూడా పెద్ద మనసుతో క్షమించారు ఆయన. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారికి మీ పాదాలకు నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. నిజంగా మీ ఉన్నతి, మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
2: Abuses directed at the Prime Minister are unacceptable, regardless of the circumstances. But with Prime Minister Modi publicly forgiving the youngsters and indicating that they should be guided rather than punished, shows compassion for the youth in India. Bureau Report, India Today. And well, independent MP Pappu Yadav's satirical skit outside the parliament has triggered a major row. Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest to pocket the cash, saying, "Theft is in our blood." Then came LOP Rahul Gandhi, who made a symbolic donation. Pappu Yadav is now in damage control mode and has released a shivling worship video amid backlash over his skit. Claiming he respects Sanatan Dharam, MP has said that his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints. But trouble is mounting for the opposition leaders. Varanasi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad. BJP-led delegation by MP Basudi Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protest on the parliament premises hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharam. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play protests outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharam and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram.
8: A day after Member of Parliament Pappu Yadav was seen in saffron clothes targeting the BJP government, playing a skit over the alleged embezzlement of funds in Ram Mandir issue, the Vishwa Hindu Parishad has now hit the streets against Pappu Yadav. They are saying that he has hurt the sentiments of crores of Hindus living across the world. Currently, I am here at Delhi Jantar Mantar, where they have organized a Sadbuddhi Havan, and they are kind of symbolically protesting against the opposition leaders and Pappu Yadav, those who have participated and played a skit yesterday in the parliament, where they have targeted the BJP government over the alleged Ram Mandir fund scam. And clearly here in the visuals, I'll show you that hundreds of saints from the various corners of the national capital have gathered here in the Delhi's Jantar Mantar, and they're protesting against the Pappu Yadav and other.
9: Sab Sanatan aur Mandir ke sare paise ko lutere ko ujagar karna aur uske khilaf ladna galat hai. Mandir ki raksha karna galat hai. Mandir ke paise ki raksha karna galat hai. Desh ke 100 crore का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है. हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है,
10: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अध्यक्ष प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी।
2: Yes, terror strikes in Jammu and Kashmir once again, where two migrant laborers from Chhattisgarh were killed in a targeted terror attack in Kulgam, with Lashkar-e-Taiba offshoot claiming responsibility for the attack. As security forces launched massive search operations and high alert has been sounded in Kulgam to the LOC district of Rajouri, the attack has reignited the political battle over Jammu and Kashmir's future. Even as the demand for Jammu and Kashmir's statehood gathers political momentum, Chief Minister Omar Abdullah has made it clear that the fight is far from over. Omar Abdullah stated that a protest at Jantar Mantar alone will not restore statehood, asserting that the agitation must continue until the centre delivers on what he says was a promise already made. BJP, meanwhile, has condemned the attack, calling it Pakistan-backed terrorism and vowing that those behind the bloodshed will not be spared. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai has announced 20 lakh rupees ex gratia for the families of the victims, termed the Kulgam attack an assault on humanity and national unity, and vowed strict punishment for the terrorists while assuring dignified last rites for the deceased.
11: Mor bhai Deepak Ratre, jo Jammu Kashmir hamla hoi se, ola raat 8 baje ke utha karke puchin hai ki tain kahan ke rehne wala hai aur tar tod dharma ka aaye तो हिंदू कही तमारीन है और इस पार्ट डे मोर भाई दीपक रात्रे खत्म हो गए।
12: हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे, हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके, सिलसिला चलता रहेगा जब तक। और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो।
13: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की अटैक हुआ है, मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते
14: हैं। क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहां की तो देगी। दूसरा, इसका बाजब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
15: एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया और उसके बाद आज निहत्थे निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया इन कायर और बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की, इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
2: Prime Minister Modi has inaugurated the 5,000 crore rupees worth Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Andhra Pradesh. Built in the first phase to handle 6 million passengers annually, the airport has been planned for future expansion to a capacity of 40 million passengers per year. Named after freedom fighter Alluri Sitaram Raju, the airport is being described as the gateway of the East. Take a look at this news report.

0: are watching India Today.
1: Prime Minister Modi has forgiven the youth who abused him during the student protests at Jantar Mantar, saying the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Prime Minister also assured them that he is working for the future and said everyone must work together for the country. Meanwhile, following the outrage, the teenager issued an apology for abusing Prime Minister Modi and promised never to repeat such remarks. We're getting you this report.
2: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
3: Forgiveness, not punishment. In an unprecedented gesture, Prime Minister Modi forgave the youth who hurled abuses at him during the student protests and gave them a chance to reform. In a recorded message released on Friday night, Prime Minister Narendra Modi said he was culturally shocked by the language used against him and his mother.
2: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
3: Prime Minister Modi forgave the abusers and urged society to guide the children instead and wish them the best.
2: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
4: मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था।
3: The teenager whose video abusing Prime Minister Modi went viral issued an apology following massive outrage and the registration of an FIR against her.
4: वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
3: New details have also emerged about the girl's background. Speaking exclusively to India Today, the owner of the salon where she had enrolled to learn nail art said that she had used a fake name during training and had refused to submit her Aadhaar card during the admission process.
5: वो काम करने नहीं आई थी, काम सीखने के लिए आई थी और करीब 25-26 मई में आई थी और वो करीब हमारे वहाँ लास्ट रही 9 जून तक। इसे 2-3 दिन काम करने के बाद हम उनसे ये बोले वे अपना आधार कार्ड ले आओ, तो 2-3 दिन तो कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, अभी आज दुकान बंद है, ऐसे बहाना करती रही। यहाँ पे जो नाम बताई थी वो मैंसिल नाम बताई थी, तो 9 जून को हमने कहा ठीक है, अगर आप जो है आधार कार्ड लेके आ सकती हो तो कल से आना, नहीं हमारे वहाँ काम सीखने के लिए मत आना।
3: Meanwhile, CJP founder Abhijit Deepke criticized the BJP over the case filed against the teenager.
6: अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए? कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की? गाली देना इज नॉट अ क्राइम. अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है. अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है.
3: The politics erupted, targeting the Prime Minister, saying that it should be him who should apologize to the youth. LOP Rahul Gandhi has set out at Prime Minister Narendra Modi, saying India's students do not need his forgiveness, but are instead owed his apology. The NDA, on the other hand, hailed Prime Minister Modi. Pawan Kalyan called Prime Minister Modi the greatest leader of all time.
7: Roju poddunna Pradhan Mantri gari statement chusanu. Ayana tittina ఎన్ని దూషించారో వారిని కూడా పెద్ద మనసుతోటి క్షమించారు ఆయన. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారికి మీ పాదాలకు నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. నిజంగా మీ ఉన్నతి, మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
3: Abuses directed at the Prime Minister are unacceptable, regardless of the circumstances. But with Prime Minister Modi publicly forgiving the youngsters and indicating that they should be guided rather than punished, shows compassion for the youth in India. Bureau Report, India Today.
1: And while independent MP Pappu Yadav's satirical skit outside the parliament has triggered a major row, Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest to pocket the cash, saying, "Theft is in our blood." Then came LOP Rahul Gandhi, who made a symbolic donation. Pappu Yadav is now in damage control mode and has released a shivling worship video amid backlash over his skit, claiming he respects Sanatan Dharam. MP has said that his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints. But trouble is mounting for the opposition leaders. Varanasi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad. BJP-led delegation by MP Basudi Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protests on the parliament premises hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharam. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play protests outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharam and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram.
8: A day after Member of Parliament Pappu Yadav was seen in saffron clothes targeting the BJP government, playing a skit over the alleged embezzlement of funds in Ram Mandir issue, the Vishwa Hindu Parishad has now hit the streets against Pappu Yadav. They are saying that he has hurt the sentiments of crores of Hindus living across the world. Currently, I am here at Delhi Jantar Mantar, where they have organized a Sadbuddhi Havan, and they are kind of symbolically protesting against the opposition leaders and Pappu Yadav, those who have participated and played a skit yesterday in the parliament, where they have targeted the BJP government over the alleged Ram Mandir fund scam. And clearly here in the visuals, I'll show you that hundreds of saints from the various corners of the national capital have gathered here in the Delhi's Jantar Mantar, and they're protesting against the Pappu Yadav and other.
9: Sanatan aur mandir ke sare paise ko lutere ko उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है. मंदिर की रक्षा करना गलत है. मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है. देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है. हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है.
10: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है. और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं. और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी.
1: Yes, terror strikes in Jammu and Kashmir once again, where two migrant laborers from Chhattisgarh were killed in a targeted terror attack in Kulgam, with Lashkar-e-Taiba offshoot claiming responsibility for the attack. As security forces launched massive search operations, and high alert has been sounded in Kulgam to the LOC district of Rajouri, the attack has reignited the political battle over Jammu and Kashmir's future. Even as the demand for Jammu and Kashmir's statehood gathers political momentum, Chief Minister Omar Abdullah has made it clear that the fight is far from over. Omar Abdullah stated that a protest at Jantar Mantar alone will not restore statehood, asserting that the agitation must continue until the centre delivers on what he says was a promise already made. BJP, meanwhile, has condemned the attack, calling it Pakistan-backed terrorism and vowing that those behind the bloodshed will not be spared. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai has announced 20 lakh rupees ex gratia for the families of the victims, termed the Kulgam attack an assault on humanity and national unity, and vowed strict punishment for the terrorists while assuring dignified last rites for the deceased.
11: Mor bhai Deepak Ratre, jo Jammu Kashmir hamla hoi se, ola raat 8 baje ke utha karke puchin hai ki tain kahan ke rehne wala hai aur tar tod dharm kaaye तो हिंदू कही तमारीन है और इस पार्ट डे मोर भाई दीपक रात्रि खत्म हो गए है।
12: हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे, हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा। कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो।
13: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की अटैक हुआ है, मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं।
14: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहां मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं, यहां कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
15: एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया, और उसके बाद आज निहत्थे निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया इन कायर और बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की, इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
1: Prime Minister Modi has inaugurated the 5,000 crore rupees worth Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Andhra Pradesh. Built in the first phase to handle 6 million passengers annually, the airport has been planned for future expansion to a capacity of 40 million passengers per year. Named after freedom fighter Alluri Sitaram Raju, the airport is being described as the gateway of the East. Take a look at this news report.

0: are watching India Today.
1: Prime Minister Modi has forgiven the youth who abused him during the student protests at Jantar Mantar, saying the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Prime Minister also assured them that he is working for the future and said everyone must work together for the country. Meanwhile, following the outrage, the teenager issued an apology for abusing Prime Minister Modi and promised never to repeat such remarks. We're getting you this report.
2: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
3: Forgiveness, not punishment. In an unprecedented gesture, Prime Minister Modi forgave the youth who hurled abuses at him during the student protests and gave them a chance to reform. In a recorded message released on Friday night, Prime Minister Narendra Modi said he was culturally shocked by the language used against him and his mother.
2: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
3: Prime Minister Modi forgave the abusers and urged society to guide the children instead and wish them the best.
2: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
4: मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था।
3: The teenager whose video abusing Prime Minister Modi went viral issued an apology following massive outrage and the registration of an FIR against her.
4: वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
3: New details have also emerged about the girl's background. Speaking exclusively to India Today, the owner of the salon where she had enrolled to learn nail art said that she had used a fake name during training and had refused to submit her Aadhaar card during the admission process.
5: वो काम करने नहीं आई थी, काम सीखने के लिए आई थी और करीब 25-26 मई में आई थी और वो करीब हमारे वहाँ लास्ट रही 9 जून तक। इसे 2-3 दिन काम करने के बाद हम उनसे ये बोले वे अपना आधार कार्ड ले आओ, तो 2-3 दिन तो कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, अभी आज दुकान बंद है, ऐसे बहाना करती रही। आपने जो नाम बताई थी वो मैंसिल नाम बताई थी, तो 9 जून को हमने कहा ठीक है, अगर आप जो है आधार कार्ड लेके आ सकती हो तो कल से आना, नहीं हमारे वहाँ काम सीखने के लिए मत आना।
3: Meanwhile, CJP founder Abhijit Deepke criticized the BJP over the case filed against the teenager.
6: अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए? कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की? गाली देना इज नॉट अ क्राइम. अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है. अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है.
3: The politics erupted, targeting the Prime Minister, saying that it should be him who should apologize to the youth. LOP Rahul Gandhi has set out at Prime Minister Narendra Modi, saying India's students do not need his forgiveness, but are instead owed his apology. The NDA, on the other hand, hailed Prime Minister Modi. Pawan Kalyan called Prime Minister Modi the greatest leader of all time.
7: Roju poddunna Pradhan Mantri gari statement chusam. Ayana tittina ఎన్ని దూషించారో వారిని కూడా పెద్ద మనసుతోటి క్షమించారు ఆయన. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారికి మీ పాదాలకు నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. నిజంగా మీ ఉన్నతి, మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
3: Abuses directed at the Prime Minister are unacceptable, regardless of the circumstances. But with Prime Minister Modi publicly forgiving the youngsters and indicating that they should be guided rather than punished, shows compassion for the youth in India. Bureau Report, India Today.
1: And well, independent MP Pappu Yadav's satirical skit outside the parliament has triggered a major row. Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest to pocket the cash, saying, "Theft is in our blood." Then came LOP Rahul Gandhi, who made a symbolic donation. Pappu Yadav is now in damage control mode and has released a shivling worship video amid backlash over his skit, claiming he respects Sanatan Dharam. MP has said that his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints. But trouble is mounting for the opposition leaders. Varanasi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad. BJP-led delegation by MP Basudi Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protests on the parliament premises hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharam. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play protests outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharam and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram.
8: A day after Member of Parliament Pappu Yadav was seen in saffron clothes targeting the BJP government, playing a skit over the alleged embezzlement of funds in Ram Mandir issue, the Vishwa Hindu Parishad has now hit the streets against Pappu Yadav. They are saying that he has hurt the sentiments of crores of Hindus living across the world. Currently, I am here at Delhi Jantar Mantar, where they have organized a Sadbuddhi Havan, and they are kind of symbolically protesting against the opposition leaders and Pappu Yadav, those who have participated and played a skit yesterday in the parliament, where they have targeted the BJP government over the alleged Ram Mandir fund scam. And clearly here in the visuals, I'll show you that hundreds of saints from the various corners of the national capital have gathered here in the Delhi's Jantar Mantar, and they're protesting against the Pappu Yadav and other.
9: Sab Sanatan aur Mandir ke sare paise ko lutere ko ujagar karna aur uske khilaf ladna galat hai. Mandir ki raksha karna galat hai. Mandir ke paise ki raksha karna galat hai. Desh ke 100 crore का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है. हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है.
10: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है. और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं. और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी.
1: Yes, terror strikes in Jammu and Kashmir once again, where two migrant laborers from Chhattisgarh were killed in a targeted terror attack in Kulgam, with Lashkar-e-Taiba offshoot claiming responsibility for the attack. As security forces launched massive search operations and high alert has been sounded in Kulgam to the LOC district of Rajouri, the attack has reignited the political battle over Jammu and Kashmir's future. Even as the demand for Jammu and Kashmir's statehood gathers political momentum, Chief Minister Omar Abdullah has made it clear that the fight is far from over. Omar Abdullah stated that a protest at Jantar Mantar alone will not restore statehood, asserting that the agitation must continue until the centre delivers on what he says was a promise already made. BJP, meanwhile, has condemned the attack, calling it Pakistan-backed terrorism and vowing that those behind the bloodshed will not be spared. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai has announced 20 lakh rupees ex gratia for the families of the victims, termed the Kulgam attack an assault on humanity and national unity, and vowed strict punishment for the terrorists while assuring dignified last rites for the deceased.
11: Mor bhai Deepak Ratre, jo Jammu Kashmir hamla hoi se, ola raat 8 baje ke utha karke puchin hai ki tain kahan ke rehne wala hai aur tere tod dharm ka aaye तो हिंदू कही तमारी नहीं और इस पार्ट डे मोर भाई दीपक रात्रि खत्म हो गए हैं।
12: हम भी जानते हैं ना अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके। सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो।
13: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते
14: हैं। क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहां की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाजब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
15: एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया, और उसके बाद आज निहत्थे निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया इन कायर और बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की, इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
1: Prime Minister Modi has inaugurated the 5,000 crore rupees worth Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Andhra Pradesh. Built in the first phase to handle 6 million passengers annually, the airport has been planned for future expansion to a capacity of 40 million passengers per year. Named after freedom fighter Alluri Sitaram Raju, the airport is being described as the gateway of the East. Take a look at this news report.

0: are watching India Today.
1: Prime Minister Modi has forgiven the youth who abused him during the student protests at Jantar Mantar, saying the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Prime Minister also assured them that he is working for the future and said everyone must work together for the country. Meanwhile, following the outrage, the teenager issued an apology for abusing Prime Minister Modi and promised never to repeat such remarks. We're getting you this report.
2: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
3: Forgiveness, not punishment. In an unprecedented gesture, Prime Minister Modi forgave the youth who hurled abuses at him during the student protests and gave them a chance to reform. In a recorded message released on Friday night, Prime Minister Narendra Modi said he was culturally shocked by the language used against him and his mother.
2: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
3: Minister Modi forgave the abusers and urged society to guide the children instead and wish them the best.
2: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
4: मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था।
3: The teenager whose video abusing Prime Minister Modi went viral issued an apology following massive outrage and the registration of an FIR against her.
4: वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
3: New details have also emerged about the girl's background. Speaking exclusively to India Today, the owner of the salon where she had enrolled to learn nail art said that she had used a fake name during training and had refused to submit her Aadhaar card during the admission process.
5: वो काम करने नहीं आई थी, काम सीखने के लिए आई थी और करीब 25-26 मई में आई थी और वो करीब हमारे वहाँ लास्ट रही 9 जून तक। उसे 2-3 दिन काम करने के बाद हम उनसे ये बोले वे अपना आधार कार्ड ले आओ, तो 2-3 दिन तो कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, अभी आज दुकान बंद है, ऐसे बहाना करती रही। यहाँ पे जो नाम बताई थी वो मैंसिल नाम बताई थी, तो 9 जून को हमने कहा ठीक है अगर आप जो है आधार कार्ड लेके आ सकती हो तो कल से आना, नहीं हमारे वहाँ काम सीखने के लिए मत आना।
3: Meanwhile, CJP founder Abhijit Deepke criticized the BJP over the case filed against the teenager.
6: अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए? कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है। अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गालियां उन्होंने ही दी है।
3: The politics erupted, targeting the Prime Minister, saying that it should be him who should apologize to the youth.
1: LOP Rahul Gandhi has set out at Prime Minister Narendra Modi, saying India's students do not need his forgiveness, but are instead owed his apology.
3: The NDA, on the other hand, hailed Prime Minister Modi. Pawan Kalyan called Prime Minister Modi the greatest leader of all time.
7: Roju poddunna Pradhan Mantri gari statement chusanu. Ayana tittina ఎన్ని దూషించారో వారిని కూడా పెద్ద మనసుతోటి క్షమించారు ఆయన. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారికి మీ పాదాలకు నేను నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. నిజంగా మీ ఉన్నతి, మీ ఔన్నత్యం ఈరోజు చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
3: Abuses directed at the Prime Minister are unacceptable, regardless of the circumstances. But with Prime Minister Modi publicly forgiving the youngsters and indicating that they should be guided rather than punished, shows compassion for the youth in India. Bureau Report, India Today.
1: And well, independent MP Pappu Yadav's satirical skit outside the parliament has triggered a major row. Pappu Yadav targeted the Ram Temple donation theft dressed as a saffron-clad priest to pocket the cash, saying, "Theft is in our blood." Then came LOP Rahul Gandhi, who made a symbolic donation. Pappu Yadav is now in damage control mode and has released a shivling worship video amid backlash over his skit. Claiming he respects Sanatan Dharam, MP has said that his protest targeted alleged donation irregularities, not Hindutva or saints. But trouble is mounting for the opposition leaders. Varanasi police has registered an FIR against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad. BJP-led delegation by MP Basudi Swaraj has submitted a police complaint alleging that their protests on the parliament premises hurt the religious sentiments of followers of Sanatan Dharam. A complaint has also been filed at the Parliament Street Police Station seeking an FIR against Rahul Gandhi and Pappu Yadav. The complainant has said that their street play protests outside Parliament deliberately hurt religious sentiments by targeting Hindu beliefs and practices, mocking Sanatan Dharam and intentionally disrespecting the photograph of Lord Ram.
8: A day after Member Parliament Pappu Yadav was seen in saffron clothes targeting the BJP government, playing a skit over the alleged embezzlement of funds in Ram Mandir issue, the Vishwa Hindu Parishad has now hit the streets against Pappu Yadav. They are saying that he has hurt the sentiments of crores of Hindus living across the world. Currently, I am here at Delhi Jantar Mantar, where they have organized a Sadbuddhi Havan, and they are kind of symbolically protesting against the opposition leaders and Pappu Yadav, those who have participated and played a skit yesterday in the parliament, where they have targeted the BJP government over the alleged Ram Mandir fund scam. And clearly here in the visuals, I'll show you that hundreds of saints from the various corners of the national capital have gathered here in the Delhi's Jantar Mantar, and they're protesting against the Pappu Yadav and other.
9: Sab Sanatan aur Mandir ke sare paise ko lutere ko ujagar karna aur uske khilaf ladna galat hai. Mandir ki raksha karna galat hai. Mandir ke paise ki raksha karna galat hai. Desh ke 100 crore का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है. हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है.
10: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है. और इसीलिए हम आज FIR की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं. और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी.
1: As terror strikes in Jammu and Kashmir once again, where two migrant laborers from Chhattisgarh were killed in a targeted terror attack in Kulgam, with Lashkar-e-Taiba offshoot claiming responsibility for the attack. As security forces launched massive search operations and high alert has been sounded in Kulgam to the LOC district of Rajouri, the attack has reignited the political battle over Jammu and Kashmir's future. Even as the demand for Jammu and Kashmir's statehood gathers political momentum, Chief Minister Omar Abdullah has made it clear that the fight is far from over. Omar Abdullah stated that a protest at Jantar Mantar alone will not restore statehood, asserting that the agitation must continue until the centre delivers on what he says was a promise already made. BJP, meanwhile, has condemned the attack, calling it Pakistan-backed terrorism and vowing that those behind the bloodshed will not be spared. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai has announced 20 lakh rupees ex gratia for the families of the victims, termed the Kulgam attack an assault on humanity and national unity, and vowed strict punishment for the terrorists while assuring dignified last rites for the deceased.
11: Mor bhai Deepak Ratre, jo Jammu Kashmir hamla hoi se, ola raat 8 baje ke utha karke puchin hai ki tain kahan ke rehne wala hai aur tere tor dharm ka aaye तो हिंदू कहीं तमारीन है और इस पार्ट डे मोर भाई दीपक रात्रे खत्म हो गए है।
12: हम भी जानते हैं ना, एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके। सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो।
13: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं।
14: नहीं, क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहां मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं, यहां कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
15: एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। कुछ दिन पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को निशाना बनाया गया, और उसके बाद आज निहत्थे निर्दोष मजदूरों को निशाना बनाया इन कायर और बुजदिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की, इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
1: Prime Minister Modi has inaugurated the 5,000 crore rupees worth Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Andhra Pradesh. Built in the first phase to handle 6 million passengers annually, the airport has been planned for future expansion to a capacity of 40 million passengers per year. Named after freedom fighter Alluri Sitaram Raju, the airport is being described as the gateway of the East. Take a look at this news report.

0: FCRA का बिल जो है पिछले बजट सत्र के समय इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद कुछ सुझाव आए थे सदस्यों से, तो उसका परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे जब BSE में इसकी चर्चा होगी।
1: बहुत महत्वपूर्ण बिल है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। अब हम सुप्रीम कोर्ट जजेस का संख्या बढ़ाया गया है, उसका भी हम बिल पारित करना है।
2: और सर FCRA अमेंडमेंट को
1: कई कई इम्पोर्टेंट बिल्स है,
2: तो उम्मीद कर सकते हैं कि
1: बिल्स के बारे में मैं आपको समय समय में सूची दे दूंगा या सूचना दे दूंगा।

0: are watching India Today.
1: Prime Minister Modi has forgiven the youth who abused him during the student protests at Jantar Mantar, saying the situation would not improve by punishing them and that children must learn from their mistakes. Prime Minister also assured them that he is working for the future and said everyone must work together for the country. Meanwhile, following the outrage, the teenager issued an apology for abusing Prime Minister Modi and promised never to repeat such remarks. We're getting you this report.
2: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
3: Forgiveness, not punishment. In an unprecedented gesture, Prime Minister Modi forgave the youth who hurled abuses at him during the student protests and gave them a chance to reform. In a recorded message released on Friday night, Prime Minister Narendra Modi said he was culturally shocked by the language used against him and his mother.
2: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
3: Prime Minister Modi forgave the abusers and urged society to guide the children instead and wish them the best.
2: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
4: मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था।
3: The teenager whose video abusing Prime Minister Modi went viral issued an apology following massive outrage and the registration of an FIR against her.
4: वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
3: New details have also emerged about the girl's background. Speaking exclusively to India Today, the owner of the salon where she had enrolled to learn nail art said that she had used a fake name during training and had refused to submit her Aadhaar card during the admission process.
5: वो काम करने नहीं आई थी, काम सीखने के लिए आई थी और करीब 25-26 मई में आई थी और वो करीब हमारे वहाँ लास्ट रही 9 जून तक। उसे 2-3 दिन काम करने के बाद हम उनसे ये बोले वे अपना आधार कार्ड ले आओ, तो 2-3 दिन तो कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, अभी आज दुकान बंद है, ऐसे बहाना करती रही। यहाँ पे जो नाम बताई थी वो मैंसिल नाम बताई थी। तो 9 जून को हमने कहा ठीक है, अगर आप जो है आधार कार्ड लेके आ सकती हो तो कल से आना, नहीं हमारे वहाँ काम सीखने के लिए मत आना।
3: Meanwhile, CJP founder Abhijit Deepke criticized the BJP over the case filed against the teenager.
6: अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए? कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की? गाली देना इज नॉट अ क्राइम. अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है. अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है.
3: The politics erupted, targeting the Prime Minister, saying that it should be him who should apologize to the youth. LOP Rahul Gandhi has set out at Prime Minister Narendra Modi, saying India's students do not need his forgiveness,